नमस्कार श्रोताओं, मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इंकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

माँ हमें जन्म देती है और धरती माँ की गोद में हमारा बचपन बीतता है। जिस देश में हमने जन्म लिया वह हमारी मातृभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उस पर हमारा सब कुछ न्यौछावर है, क्योंकि उसने हमें अन्न दिया, जल दिया, आश्रय दिया, हमारा पोषण किया। कोई भी देशवासी अपनी धरती से अपने अस्तित्व को अलग नहीं कर सकता। देशभक्ति की भावना इंसान को देशभक्ति से ओतप्रोत रखती है। आइए वंदन करें इस देश का।

सच्चा देश प्रेमी वही होता है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से बड़ा त्याग कर सकता है। सच्चा देशभक्त कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होता है। वो अपने प्राण हथेली पर रखकर देश की रक्षा के लिए शत्रुओं का मुकाबला करता है। ध्यान रहे, सभी को अपना कार्य करते हुए देशहित को सर्वोपरि समझना चाहिए। हमारे देश में अनन्य देशभक्त हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमें भी उनके जैसा ही देशभक्त होना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा और नतमस्तक होना चाहिए।

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस मनुष्य में अपने देश के प्रति अनुराग नहीं है, वो मनुष्य भावना शून्य है, संवेदनहीन और पत्थर के समान है। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानना चाहिए। जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे हृदय में देश के लिए त्याग एवं बलिदान की भावना होनी चाहिए। सच्चा राष्ट्रप्रेमी इन्हीं भावनाओं से भरा होता है। देश से वो कोई अपेक्षा नहीं, बल्कि उसके हित के लिए सोचता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यति।

तिरंगे की शान कभी झुकने नहीं देंगे, भारत माँ का मान कभी मिटने नहीं देंगे, जब तक है जान इस शरीर में, देश का सम्मान कभी टूटने नहीं देंगे।

भारत हमारी जननी, हमारी धरती, हमारा देश। कैसे हो माँ तेरे सूखे नयन, कैसे हो माँ तेरे रूखे केस, कैसे हो माँ तेरा धूल का आसन, कैसे हो माँ तेरा मलिन वेश। 30 कोटि संतान जिसकी, मिलके पुकारे हमारा देश। कैसा है तू, कैसी है चिंता, कैसी है लज्जा।

यादें जगत पर आज भी उनकी भक्ति का साथ। तेरे अशोक ने शोक मिटाया, यश फैलाया देश विदेश। उसकी नहीं थी माता तू जननी, उसका नहीं था माता ये देश। कैसा है दुख, कैसी है चिंता, कैसी है

0: प्रताप ने सिर न झुकाया, क्या है नहीं उसका धन्य देश। धन्य है माता अपनी नसों में, अगर है उनका रक्त शेष।
1: कैसा है दुख, कैसी है चिंता,

न झुकेगा तिरंगा, न झुकेगा हमारा मान, भारत माँ की सेवा है सबसे बड़ा सम्मान। न झुकेगा तिरंगा, न झुकेगा हमारा मान, भारत माँ की सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान। हर दिल में देशभक्ति का दीप जलाएं, मिलकर हम नया भारत बनाएं। जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, जिस धरती ने हमें सम्मान दिया, उस भारत माँ को शत शत नमन, जिसने हमें आज़ाद का आसमान दिया। उस भारत माँ को शत शत नमन, जिसने हमें आज़ादी का आसमान दिया। जय भारत।

महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह देश प्रेम का धर्म हमें आज ये सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को ग्राम के लिए, ग्राम को जनपद के लिए और जनपद को प्रदेश के लिए मरना सीखना चाहिए, उसी तरह किसी देश को स्वतंत्रता इसलिए दिलानी चाहिए कि वो ज़रूरत होने पर संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे सके। इसलिए राष्ट्रवाद की मेरी कल्पना ये है कि मेरा देश स्वाधीन हो, ज़रूरत पड़ने पर सारा ही देश मानव जाति की प्राण रक्षा करे, बलिदान के लिए आगे आए। इसमें जाति देश के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कामना है हमारा राष्ट्र प्रेम एक सा हो। जय भारत। अब भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे अंगदान देह की सार्थकता। आलेख है किशोर श्रीवास का और वाचक है नीलेश जोशी।
1: अंगदान देह की सार्थकता। सृष्टि के अनंत काल चक्र में मनुष्य का जीवन एक लघु तरंग की भांति है। हम आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और एक दिन इस दृश्य जगत से विदा हो जाते हैं। इस पूरी यात्रा में जो एक तत्व हमारे सबसे निकट रहता है, जो हमारी चेतना का संवाहक बनता है, वह है हमारा यह भौतिक शरीर। जन्म से लेकर अवसान तक सुख दुख के हर एहसास को यह देह झेलती है। किंतु भारतीय दर्शन सदा से एक गंभीर प्रश्न पूछता आया है कि इस पंच भौतिक शरीर की अंतिम नियति क्या है। मिट्टी से उपजा यह आकार अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। प्रकृति के विधान को यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। एक वृक्ष जब सूखता है तो उसकी सूखी पत्तियां और डालियां मिट्टी को उर्वर बनाती है, जिससे नए अंकुर फूटते हैं। एक नदी जब सागर में मिलती है तो वह मार्ग में आने वाले संपूर्ण भूभाग को जीवन देकर जाती है। प्रकृति का मूल सिद्धांत है परिवर्तन और निरंतरता। यहां अंत जैसी कोई वस्तु नहीं है। प्रत्येक अंत वास्तव में एक नए आदि की भूमिका होती है। किंतु मनुष्य प्रायः अपनी नश्वरता को ही स्वीकार करने से बचता है। हम जिस शरीर को सजाने संवारने और सुरक्षित रखने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उसकी वास्तविक सार्थकता किस बात में है? क्या केवल अस्तित्व को बनाए रखने में, या अपने अवसान के पश्चात भी किसी रूप में जीवित रहने में? यहां चिंतन की एक अत्यंत गहन परत खुलती है, जिसे हमारे मनीषियों ने परमार्थ कहा है। जब कोई देह अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसके पश्चात दो ही मार्ग शेष रहते हैं, या तो वह अग्नि को समर्पित हो जाए या माटी में विलीन हो जाए। दोनों ही स्थितियों में वह पंच तत्वों में विखंडित हो जाती है। किंतु यदि उसी क्षण उस शांत हो चुकी देह का कोई अंश किसी अन्य बूझते हुए जीवन का प्रकाश बन जाए तो वह मृत्यु पर जीवन की विजय का उत्सव बन जाता है। इसे स्थूल रूप से अंगदान कहा जा सकता है, परंतु दार्शनिक दृष्टि से यह नश्वरता से अमरता की ओर बढ़ाए गए एक कदम की भांति है। यह किसी उपदेश का विषय नहीं है, यह तो जीवन की उस अंतिम सीमा पर खड़े होकर लिया जाने वाला एक मूक निर्णय है, जहां मनुष्य अपने अहम और आसक्ति का पूर्ण विसर्जन कर देता है। ऋषि दधीची की कथा हमारे वांग्मय में अमर है। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था ताकि वज्र का निर्माण हो सके और अधर्म का विनाश हो। वह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि वह इस सत्य का प्रतीक है कि जब तक यह शरीर चेतन है तब तक इसके द्वारा किए गए कर्मों का महत्व है, और जब यह अचेतन हो जाए तब उसकी भौतिकता का सदुपयोग ही इसकी अंतिम परिणति होना चाहिए। किसी की अंधकारमयी आंखों को संसार के रंग लौटा देना या किसी धड़कन को थमने से बचा लेना, यह किसी पर किया गया उपकार नहीं है, बल्कि इस सुंदर वसुंधरा से जो कुछ हमें मिला था उसे वापस लौटाने का एक अत्यंत पवित्र माध्यम है।
0: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे अंगदान देह की सार्थकता था। आलेख था किशोर श्रीवास का और वाचक थे नीलेश जोशी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। खेती की बातें में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सहजन, पेड़ एक फायदे अनेक। वाचक है अनुराधा शर्मा।
2: सबै किसान भाई बहन नखा डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांगा सहजन एक पेड़ न फायदा अनेक। सहजन जगह कि हमारा किसान भाई बहन मुनगा या मोरिंगा भी कज न बहुत सारा भाई बहन एक सुरजना की फली भी कज न अंग्रेजी में एक नाम छे ड्रमस्टिक। ये एक ऐसो पौधो छे या ऐसो वृक्ष छे जी के किसान भाई बहन न खा लेना बहुत सारा फायदा एक साथ दज। पोषण मिली जाज, पर्यावरण खा लेना अच्छो रज न साथ में किसान भाई बहन न खा आय में भी वृद्धि हुई जाज। तो एक पेड़ से तीन लाभ मिली राज एका लेना लोग एक कज एक पेड़ फायदा अनेक। जिन्हें किसान भाई बहन ने एक मुख्य फसल का रूप में अपनायो या अपना खेत में लगायो तो उनका लागत में जी छे वो कमी आवज। क्योंकि सहजन की खेती जी छे बाकी दूसरी खेती न का अपेक्षाकृत कम लागत में हुई जाए। एक ही देखभाल भी बहुत आसान छे। एक बार खेत में लगाई दियो तो बहुत वर्ष न तक को उत्पादन मिलतो रज नौका में फली न लगती रज। एका साथ ये भी देखांच कि बहुत जल्दी तैयार होने वाली फसल छे। सहजन की उन्नत किस्म यदि हमारा किसान भाई बहन ने लगाई तो अपन नखा ये समझना की आवश्यकता छे कि रोपाई का लगभग 6 से 8 महीना का अंदर ज एक फली ने बढ़नू शुरू हुई जाए फली ने लगनू शुरू हुई जाए। तो किसान भाई बहन नखा आय जी मिली रही जो जल्दी आय मिलना लगी जाए। बाजार की मांग की बात करें तो सहजन में असो एक वृक्ष छे जो हर हिस्सों उपयोगी छे। एक ही हरी फली न उपयोगी छे, एक ही पत्ती न को भी उपयोग होज, फूल बीज सबई न की मांग बाजार में छे। यहाँ तक कि एक ही छाल को भी उपयोग हुई रोज। तो सब्जी मंडी का साथ साथ प्रसंस्करण उद्योग में भी एक ही उपयोगिता बहुत छे। तो एक कारण हमेशा एक ही मांग बनेल रज। पत्ती नसी पाउडर बनावणू, बीज नसी तेल बनावणू, ये सब किसान भाई बहन नख छे ते लाभ दई जाज। दूसरी बात ये बड़ी छे कि सूखा सहन करने की क्षमता सहजन का वृक्ष में बहुत अधिक रज। तो सहजन कम पानी में भी अच्छो उत्पादन दई देज। एक ही बढ़वार अच्छी होज न ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि अपन देखें कि वर्षा की स्थिति अच्छी नहीं है या जिनका पास की सिंचाई का साधन सीमित छे उना क्षेत्र न में भी हमारा किसान भाई बहन सूखा सहन करने वाला सहजन का वृक्ष न की खेती करी सकज या एक अपनी मेड़ न पर लगाई सकज। अब अपन देखें कि कृषि वाणी के का लेना बड़ा उपयुक्त छे। ई जी छे खेत की मेड़ पर लगाई दे हमारा बहुत सारा किसान भाई तो ओकासी काई हो जाए कि इनका खेत की जी जमीन छे ओका में बहुत सुधार होज न अतिरिक्त आय तो उनका मिली ज रही। इना पेड़ की जी जड़ न छे वो मिट्टी का कटाव का कम कर देज, हरित आवरण का बढ़ाई देज न जैव विविधता का भी सहारो दे देज। एका साथ जब एक ही पत्ती न सूखी ना नीचे पड़ी जाए तो मिट्टी में मिली ना ये जैविक पदार्थ का बढ़ाई देज मिट्टी में तो मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी हुई जाए ना। हमारा किसान भाई तो एक ही हरी पत्ती न को उपयोग पशु चारा का रूप में भी करेज। अपना क्षेत्र न में पशु आहार का पूरक का रूप में भी वो अपना पशु न खा एक खवाड़ज। तो एक ऐसी चारा का जी अतिरिक्त खर्चो करनू पड़ज वो भी उनको कम हुई जाए। बात करा एक पोषण मूल्य की तो सबसे पहले तो सहजन की पत्ती न जी छे पोषक तत्व न का भंडार भरेल छे। एक में प्रोटीन छे, कैल्शियम छे, आयरन छे, पोटेशियम छे, विटामिन ए अच्छी मात्रा में छे, विटामिन सी मिली जाए न एंटीऑक्सीडेंट भी छे। तो बच्चा न का लेना, महिला न का लेना, बुजुर्ग न का लेना ने एक साथ गर्भवती बहन न का लेना ये विशेष रूप से लाभकारी छे। जिना भाई बहन में खून की कमी की समस्या छे, एनीमिया की समस्या छे उनका लेना सहजन की पत्ती न फली संतुलित आहार का साथ अच्छो हिस्सो बनी जाए। एक साथ साथ सहजन जी छे वो हड्डी न का भी मजबूत करज, पाचन तंत्र का अच्छो कर देज न मधुमेह या दूसरी जी गंभीर समस्या न छे जेका में कि लोग दवाई न ले राज ओका साथ साथ ये एको सेवन करीना न औषधीय रूप में भी चिकित्सक की सलाह से एक लई सकज। एक कल्याण बहुत सारा लोग एक कहावत का रूप में एक कज जिना घर आंगन में सहजन को साथ वहाँ स्वास्थ्य न समृद्धि दुई न को वास। आज किसान भाई बहनों से हमारो योज कहणु छे।
0: खेती की बातों में अभी आप सुन रहे थे सहजन पेड़ एक फायदे अनेक। वाचक थे डॉक्टर अनुराधा शर्मा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड में आज का प्रसंग।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान में आज का प्रसंग। आइए श्रोताओं, हम आपको हमारी आज की सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। सात बजकर 7:20 पर ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जन जन में गीता। 7:35 पर आनंद लीजिएगा सुनहरे पल में फिल्मी गीतों का। 8:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सवेरे 9:00 लोक संगीत में आप आनंद लीजिएगा सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोक गीतों का। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सवेरे 9:15 पर, इसमें आप सुनेंगे वंदना दुबे की गाई चंद रचनाएँ। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे नरेंद्र धर का सरोद पर बजाया राग जौनपुरी। 10:00 जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मनभावन।

11 बजे भोपाल से प्रसारित होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे फिल्म संगीत, 1 बजे महिला कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभिक चर्चा का विषय है मोबाइल और सोशल मीडिया का बच्चों पर प्रभाव। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के बारे में आप जानेंगे महिला कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय रहेगा गर्भावस्था के दौरान पोषण। इस विषय पर आपको जानकारी देंगी डॉक्टर विभूति त्रिवेदी। रूप लावण्य क्रम में आप जानेंगे मुहासों से बचने के उपाय और फैमिली फिटनेस में आप जानेंगे जंक फूड को कहीं ना। आपकी सुरक्षा आपके हाथ, इस क्रम में आप जानेंगे ऑनलाइन फिशिंग से सावधान कैसे रहें। 1:30 पर होगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 2 बजे चित्रपट संगीत।

हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी से। 5:45 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत में आप सुनेंगे सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। 7:20 पर चर्चा एवं लोकगीत और 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसके प्रायोजक हैं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का और 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रगीत। 9:30 पर श्रोताओं के पत्र पर आधारित फिल्मी गीतों का

कार्यक्रम होगा मन भावन। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे का गाया राग बिहाग।

0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, सवेरे के 6:55 होने को ही संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकम् 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्य सर्वकाराः सहकारिता विकास कार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीय साहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकं उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकम् 26,000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थम् संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गेरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,000,000,000 परियोजना स्वीकृतास्ति। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100+ भविष्यति। अस्मिन् 53 परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण

0: छात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि, एकं रजत पदकं, एकं कांस्य पदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनाव पूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आई श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दी। इस गुरुवार दिनांक 13 अगस्त यानी कि आज सवेरे 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बोन मेरो ट्रांसप्लांट से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शिवानी पटेल से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारतीय चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 13 अगस्त समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 13 अगस्त यानी कि आज सवेरे 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर 101.6 MHz से और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

आयशोता आपको एक बार फिर से बता दें, आज सवेरे 10:32 से 11:02 तक हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज आप सुनेंगे बोन मेरो ट्रांसप्लांट से संबंधित जानकारियां और जिज्ञासाएं। हमारी आज डॉक्टर हैं डॉक्टर शिवानी पटेल। फोन नंबर से 2710223 2710224। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी की

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के बड़े तालाब में निकाली जाएगी नौका तिरंगा यात्रा। अहमदाबाद निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को व्यापक परामर्श संसद दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। इस समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित लोकसभा के 21 सांसद, सभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। भोपाल के बड़े तालाब में आज नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से बोट क्लब से यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का मंत्री विश्वास सारंग ने कल जायजा लिया और सुरक्षा, यातायात, नाव संचालन और गोताखोरों तथा SDRF की तैनाती के निर्देश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: मध्य प्रदेश और गुजरात ये परस्पर एक दूसरे के साथ कई प्रकार के क्षेत्रों में अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर अपनी साथ में प्रगति के लिए चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मां नर्मदा के कारण से गुजरात की भी समृद्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन समय जब CM थे उसी का लाभ गुजरात को भी मिला, मध्य प्रदेश को भी मिला। अपने राज्य के गुजरात के में व्यापारियों को जो गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करे, साथ ही समान रूप से मध्य प्रदेश में भी वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए।
0: उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। संवाद में 500 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रपति के विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक प्रदान करेंगे। इनमें पुलिस के 9 विशिष्ट सेवा और 33 सराहनीय सेवा पदक जबकि होमगार्ड के 3 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। इसके अलावा 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह में मरणोपरांत मंदसौर के स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को भी सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता बाधक नहीं बने। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि CPCT परीक्षा के कारण किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या उनका डिमोशन ना किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में तीसरा स्थान मिला है। वह एनीमिया नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए तैयार उत्कृष्ट आईईसी सामग्री को बेस्ट आईईसी डिस्प्ले सम्मान दिया गया। ये सम्मान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदान किए गए। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,33,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और समारोह को संबोधित कर रही थीं। इनमें सड़क, नाली और सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं। श्रीमती गौर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया। प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। इसके गठन से सिंहस्थ से जुड़े विकास, अधोसंरचना और प्रशासनिक कार्यों को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने में तेजी आने की उम्मीद है। भोपाल में आज से हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह 10:30 बजे महापौर मालती राय करेंगे। इसमें देशभक्ति, विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। भोपाल में भारी बारिश के बीच जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया है कि बारिश से पहले ही नगर निगम, एसडीआरएफ, ट्रैफिक, राजस्व और सड़क से जुड़े विभागों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। उन्होंने कहा है कि जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और टीमें लगातार काम कर रही है।
3: बहुत सी जगह है जिनकी मुझे भी सूचना मिली है, मुझे भी जो फीडबैक मिला है, जहाँ पूर्व वर्षो में पानी ज्यादा भरता था, बट इस बार जो है वहाँ साफ सफाई से वहाँ उतना तेज पानी नहीं भरा और निकला भी, समय पर निकल भी गया। शायद ही कोई शहर हो ऐसा देश का, आप चेन्नई ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हर जगह ये अर्बन फ्लड्स जो है वो एक सच्चाई है शहरों की। हम ये सोच लें कि पानी कहीं पर एक बूंद भी नहीं रुकेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन वो किस गति से निकल रहा है और जो भी स्थानीय प्रशासन है वो किस गति से काम कर रहा है, यही हमारा रोल है।
0: वहीं कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिमी की ओर पड़ रहा है, जिसके चलते विभाग ने आज शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में खरगोन, खंडवा, गुना में तेज बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के शासकीय महाविद्यालय दलौदा में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में नशा मुक्ति युवा भारत थीम पर जिला स्तरीय विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटनी में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में नीति धारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में एड्स के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कल जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ज्ञान दर्शन।

0: मैं नवीन कुमार गोयल, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और आजकल संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत हमारे हैं श्रीमान परम पूज्य शांताराम जी भंडारकर, जो उडुपी में विराजते हैं। उनकी 87 वर्ष की आयु है और मैं उनके साथ में करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने एक पुस्तक निकाली सरल भगवद गीता, जो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ तक की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। उसी में एक पेज नंबर 4 पर उन्होंने लिखा था कि कुछ 701 श्लोक जो भगवद गीता में है 18 अध्याय में, उसमें से जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं जिससे भगवद गीता का यूज़ हो सके डे टू डे लाइफ के अंदर बच्चों के साथ में, और जो वयस्क हैं जिन्होंने भगवद गीता का एक्सपोजर नहीं है वो भी अपनी ये बाल गीता पढ़कर उसको समझ सकेंगे। हमने इसमें कुल 53 श्लोक निकाले हैं। हमारी भावना यह है कि हर सनातनी को ये कम से कम 50 से श्लोक याद होने चाहिए, हर भारतीय को सब श्लोक इतने श्लोक याद होने चाहिए। इसके साथ ही अभी हम आगे बाल रामायण भी बना रहे हैं, जिसमें मुख्य मुख्य चौपाई और दोहे, छंद और श्लोक वो डाल रहे हैं। वो भी हमारी किताब अभी आ जाएगी। ये किताब सबके लिए अवेलेबल है, और मेरा नंबर चाहे तो आप नोट कर लीजिए, 9425056286। इंदौर में हूँ। भगवद गीता के ज्ञान के लिए हमको भगवद गीता का ज्ञान हो या वेद का ज्ञान हो या पुराण का ज्ञान हो या रामचरितमानस का ज्ञान हो, वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो, ये सब उपनिषदों का ज्ञान हो, इन सब के लिए हमको कम से कम रोज दैनिक जीवन में हमको लेना चाहिए कि कम से कम आधा घंटा हम इसको देवें और उसको पढ़ें और उसको आत्मसात करें। जब हम पढ़ेंगे तब उसको आत्मसात हो पाएगा और उसके बाद में हम अपना डे टू डे लाइफ के अंदर उसको यूज़ कर सकेंगे। इसी हेतु हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। परम पूज्य गुरु जी की कृपा से ये आगे बढ़ रहा है, और इसमें हमने 24 श्लोक निकाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग दुख भवति दुखहा। मतलब आप युक्त आहार कीजिए, युक्त विहार कीजिए, युक्त सोइए और युक्त आपकी चेष्टा कीजिए, इससे आप आगे बढ़ सकेंगे। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करके करिए, वो भी 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा गया है। ऐसे ही आपको भगवान को समर्पण करना है तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षरे यश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। रामचरितमानस लेंगे तो रामचरितमानस में आपकी कुछ चौपाइयाँ हैं, गुरु ग्रह गए पढ़ने लघुराई अल्पकाल विद्या सबाई। रामचंद्र जी जब वशिष्ठ जी के यहाँ पर पढ़ने जाते हैं तो ये चौपाई बोल के जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी से वो सब चीज़ सीख सके। राम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी मुझुग पानी, ये हो गया। फिर अतुलित बलधामम हेम शालाब देमम। तो इस तरह के जो चौपाइयाँ और श्लोक हैं वो सब हमने बाल रामायण में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो किताब भी आएगी और आप सबके लिए उपलब्ध होगी।
1: ओम परमात्मने नमः। मेरा नाम सुरेश चंद्र वोरा है। मैं BHEL भोपाल से सीनियर इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। मेरा जन्म मुजफ्फराबाद POK में हुआ है और मैं मध्य प्रदेश में लगभग 60 साल से हूँ। तो जैसे मेरे से थोड़ा कहा गया है कि मैं अपने धर्म दर्शन पे कुछ बात करूं, तो उसके लिए यही कहना है कि हमारे जितने वेद शास्त्र उपनिषद पुराण जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सब हमें अपने जीवन शैली के बारे में बताते हैं कि हमारी जीवन शैली कैसे हो, हमारे कर्म कैसे हों, ताकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, ये सार्थक हो और हम परम गति को प्राप्त हों। ये मनुष्य का एक इसी कर्तव्य के लिए पैदा हुआ है कि उसका जीवन सफल हो और वो जो है परम धाम को प्राप्त हो, ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त हो, अपने कर्तव्यों को और कर्मों को निभाते हुए। ये ध्यान देने वाली बात है। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो अपने कर्तव्य और कर्मों को निभाते हुए मेरा नाम लेते हुए और जो मैंने गीता में कहा है उसका पालन करते हुए चलता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है और वो परम धाम की प्राप्ति कर सकता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। मैं आपको अब सिर्फ 3 मिनट में गीता सार बताता हूँ। देखिए, गीता की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान में, सबको मालूम है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मोह को प्राप्त होने का मतलब इस संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति राग, संसार के प्रति प्रेम, अपने रिश्तेदारों के प्रति प्रेम, आसक्त, यहीं से गीता की शुरुआत होती है। और कृष्ण अर्जुन को इसी आसक्ति, इसी राग, इसी ममता से छुड़वाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में आखिरी श्लोक में कहते हैं, तू स्थिर हुआ कि नहीं, स्थित प्रज्ञ हुआ कि नहीं, अब तो युद्ध के लिए तैयार है कि नहीं। वो कहता है मैं तैयार हूं बिल्कुल। तो 701 श्लोक जो बीच में है उसमें प्रभु कृष्ण भगवान जीने का ढंग, जीवन में कैसे कैसे कैसे करके तुम जो है अपना जीवन सार्थक कर सकते हो, उसके कुछ तरीके बताए हैं, रूल्स तरीके बताए हैं, ताकि हम अपना जीवन सार्थक करें, अपना धर्म और कर्तव्यों को निभाएं, अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाएं और मुझे प्राप्त करें। बार बार कहते हैं आसक्ति रहत, संसार से प्यार करना है, आसक्ति नहीं करनी। जिस तरह से अर्जुन को संसार से आसक्ति हो गई थी, उसको छुड़ाने का प्रयास पूरी गीता में कृष्ण का प्रयास यही है कि संसार का उपयोग करो, इसे आसक्ति नहीं करो। आसक्ति या प्रेम करना है तो मुझसे करो, जिसने पूरा संसार और पूरी प्रकृति बनाई है। मैं, आप मेरे अंश हो, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे अंश हो, मैं अंशी हूँ, तुम लोग अंश हो। मेरी शरण में आओ और परम गति पाओ, यही तुम लोगों के जीवन का अध्याय होना चाहिए। धन्यवाद।
2: मैं लक्ष्मी नारायण राठौर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक। उनका उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जो पूरे विश्व में भगवद गीता का ज्ञान का प्रसार करना, इसके लिए वो पाश्चात्य देशों के उद्धार के लिए अमेरिका भी गए थे और वहाँ पर इनकी स्थापना की थी। तो भगवद गीता का महत्व हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं, अगर भगवद गीता को समेटना हो तो एक श्लोक गीता में, अगर एक श्लोक में समेटें तो वो है, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो इसके तात्पर्य में ये 5 बातें बताई है कि भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृत, यानी जो कुछ भी आप कर्म करते हो वो मेरे लिए करें। मत परम, और मुझे परम मानते हुए, क्योंकि मैं ही सब चीज़ों का उद्गम हूँ, मुझसे ही सारी चीज़ें उद्भूत हुई है, इसलिए परम मानते हुए। मत भक्त, और इसलिए मेरे भक्त बने। भक्त बनने से क्या होता है कि हम भगवान के शरणागत होते हैं, शरणागत होने से हम सभी संकटों से, पापों से मुक्त होते हैं। संग वर्जित, और हमें क्या करना होगा कि अनासक्त भाव से, इस भौतिक जगत में अगर हमें रहना है तो अनासक्त भाव से हमें रहना है। हमें हमारे जो भी पदार्थ हैं, जो भी संबंध हैं, जो भी सबसे कर्तव्य भाव से हमें इनको उपयोग करना है, और सेवा भाव से इनकी हमें उपभोग करना है। आगे भगवान कहते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु, तो ये जब सारी सृष्टि मेरी रचना है तो किसी से भी वैर भाव से नहीं रहे, मित्रवत रहे, क्योंकि मैं जब सबका सूर्य मित्र हूँ और आप मेरे अंश हैं, तो आप भी मेरी तरह सबसे निर्वैर भाव से रहें। यह इसका मुख्य संदेश है, और इस संदेश को प्रसारित करने के लिए आज सारे विश्व में प्रयास हो रहे हैं। और अभी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके जो मंत्रिमंडल में हैं, एक सदस्य हैं जो भगवद गीता को अपने उसको उद्देश्य को लेकर काम कर रही है, और हमारे भारत में भी अब इसका पाठ्यक्रम में भी इसको लाना का आरंभ हो गया है, और क्योंकि जो काफ़ी बरसों से हमारे यहाँ पर इसके लिए प्रयास करना था और उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: शैलेंद्र की रचना थी, लता मंगेशकर का स्वर, फिल्म का नाम था जागते रहो।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं इंसाफ फिल्म का गीत। मुकेश और आशा भोसले का स्वर है, अख्तर रोमानी का ये गीत है और उषा खन्ना का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत। सुधीर फड़के का संगीत था और फिल्म का नाम था भाभी की चूड़ियाँ। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत। भरत व्यास की शब्द रचना है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने को ही समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
7: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
8: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
5: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
9: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
5: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
10: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
12: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
13: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन

0: चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरल में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे।

0: Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है मणिलाल मूला शंकर पंड्या। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और दमोह से खुशी हुर्रा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
4: हर शाम 6 से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 से शाम 7 तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कभी कभी शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, वो समय की स्मृति बन जाते हैं, वो पीढ़ियों के बीच संवाद का सेतु बनते हैं, संस्कृति की चेतना को अक्षुण्ण रखते हैं और मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदना को जगाते हैं। एक ऐसे ही महान शब्द साधक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। उन्होंने कलम को यश पाने का साधन नहीं, समाज का ऋण चुकाने का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी में गांव की पगडंडियां बोलती हैं, किसानों की पीड़ा स्वर पाती है, मानवीय रिश्तों की ऊष्मा स्पंदित होती है और भारतीय जीवन दर्शन अपनी सरलता और संपूर्ण गरिमा के साथ आकार लेता है। उन्होंने भाषा को अलंकारों से नहीं, आत्मीयता से सजाया, शब्दों को वैभव से नहीं, संवेदना का सौंदर्य दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान एक युग प्रवर्तक, गद्यकार, संपादक और भाषा संस्कारक के रूप में अमर है। वो एक उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक होने के साथ साथ प्रखर पत्रकार भी थे। उन्हें हिंदी गद्य का अनुपम शिल्पकार और भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सन 1960 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के शाहबाद जिले के उनवास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। बचपन में पिता से सुनी रामकथा और ग्रामीण जीवन ने उनके भीतर लोक संस्कृति और बोली भाषा के संस्कार बो दिए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जहां उन्होंने कैथी लिपि, हिंदी और फारसी की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो औपचारिक उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और बनारस की अदालत में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही आरा में हिंदी शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य आरंभ किया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती। यूं भारत भूमि की आजादी का स्वप्न उनके भीतर जागने लगा।

इसी बीच साल आया सन 1921। महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी की पुकार पर आचार्य शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा पत्रकारिता के माध्यम से इस लड़ाई में शामिल होने का निश्चय किया। इस तरह अब उनका जीवन पत्रकारिता और साहित्य को पूर्णतः समर्पित हो गया। वो केवल संपादक नहीं बल्कि संपादन संस्था के रूप में स्थापित हुए। सन 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित मारवाड़ी सुधार नामक पत्रिका से उनकी संपादकीय यात्रा आरंभ हुई। सन 1923 में वो ऐतिहासिक मतवाला मंडल के सदस्य बने। कलकत्ता से निकलने वाले राष्ट्रीय पत्र मतवाला के संपादकीय मंडल में वो निराला जी के साथ शामिल थे। मतवाला के नामकरण और इसके जुझारू तेवर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को तीखा स्वर दिया। लखनऊ से प्रकाशित माधुरी पत्रिका के संपादन विभाग से भी वो जुड़े और यहीं मुंशी प्रेमचंद के निकट सहयोगी बने। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की भाषा को तराशने और उसके संपादन का श्रेय शिव पूजन सहाय जी को ही जाता है। उन्होंने इसमें उर्दू प्रभावित वाक्य विन्यास का परिष्कार किया तथा देवनागरी मानकीकरण के साथ कथा गद्य को प्रवाह देने में योगदान दिया। सन 1926 से 1936 के बीच अपने काशी प्रवास के दौरान वो जयशंकर प्रसाद के मित्र मंडल में शामिल हुए और जागरण पत्रिका का संपादन किया। प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी की पांडुलिपि के संशोधन का ऐतिहासिक गौरव भी शिवपूजन सहाय जी को प्राप्त है। उन्होंने इसमें क्लिष्ट तत्सम भाषा की व्याकरणगत संगति, छंद सुधार और मुद्रण योग्य पांडुलिपि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निराला जी की अनेक बिखरी हुई पांडुलिपियों के संपादन और मतवाला के लिए अनेक अनगढ़ गद्य को निखारने का कार्य किया। इस तरह उन्होंने हिंदी के तीन युग पुरुषों की कृतियों को संवारा लेकिन स्वयं सदैव नेपथ्य में रहे। लेकिन सच यही है कि यदि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इतना प्रांजल हुआ, यदि निराला जी का काव्य शिल्प मतवाला के माध्यम से स्थापित हुआ और यदि कामायनी जैसी अमर कृति इस रूप में सामने आई, तो इसमें शिव पूजन सहाय जी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रमण ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, आचार्य शिव जी ने लिखा कम लेकिन कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था, संपादक के रूप में शिवपूजन सहाय एक माली थे, उसी तरह नए पौधों को रोपते थे। उनकी बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण हैं। इस तरह हिंदी साहित्य की सेवा के क्षेत्र में शिव पूजन सहाय नेपथ्य के महानायक के रूप में स्थापित होते हैं।

सन 1934 से 1939 तक दरभंगा के लहरिया सराय स्थित पुस्तक भंडार से जुड़कर शिवपूजन सहाय ने संपादन का कार्य किया तथा बाल पत्रिका बालक को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1939 से 1949 तक वो राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। यहां वो 10 साल तक हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। इस दौरान उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। उनके लिखे आरंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिवपूजन जी का मानना था कि साहित्य केवल बुद्धि का विलास नहीं बल्कि आत्मा की पुकार तथा समाज का दर्पण है। उन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। वो ठेठ देहाती मुहावरों, कहावतों और आंचलिक शब्दों का प्रयोग इतनी चतुराई से करते थे कि भाषा में अलौकिक तरलता आ जाती थी। उनकी लेखन शैली में दृश्य रचने की अद्भुत क्षमता है। वो शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवंत चित्र खींचते हैं कि पाठक स्वयं को उस परिवेश का हिस्सा महसूस करने लगता है। आचार्य शिवपूजन सहाय के लेखन की एक विशेषता ये भी है कि वो गंभीर से गंभीर विषयों में भी सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य का पुट मिलाकर भाषा को बोझिल होने से बचा लेते हैं। वो भाषा के प्रति अत्यंत सतर्क थे। उनका गद्य न तो संस्कृत की जटिलता से दबा हुआ था और न ही उर्दू फारसी का अतिशय प्रभाव उसमें दिखाई देता है। ये हिंदी का अत्यंत परिमार्जित और प्रांजल रूप था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, विभूति, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृतिशेष, हिंदी भाषा और साहित्य आदि। सन 1926 में प्रकाशित उनकी कृति देहाती दुनिया को हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसमें गांव केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि स्वयं जीवंत पात्र सा सामने आता है। खेत, मेले, लोकगीत, रिश्तों की ऊष्मा और बाल मन की सहजता, सब कुछ इतनी आत्मीयता से चित्रित है कि पाठक स्वयं उस गांव का निवासी बन जाता है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, रहस्य ये है कि जब हम लोग रामायण पाठ की कथा सुनते सुनते ऊंघने लगते तब बाबूजी मुस्कुराकर पोथी बंद कर देते और हमें दुलार कर सुला देते। माता के आंचल में छिपकर सोने में जो सुख और सुरक्षा मिलती थी वो

संसार के किसी राज सिंहासन पर नहीं थी। ये केवल एक स्मृति नहीं, भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एक भावचित्र है। सहाय जी ने संस्मरणों की विधा में भी अमूल्य योगदान दिया। उनका प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह वे दिन वे लोग केवल स्मृतियों का संकलन नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का जीवंत दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का चित्रण अत्यंत आत्मीयता से किया है। निराला जी के विषय में वो लिखते हैं, निराला जी के पास जब जेब में पैसे होते थे तो वे किसी भूखे नंगे को अपनी कुर्ती तक उतार कर दे देते थे, और जब शाम को उनके पास दिया जलाने के लिए माचिस भी नहीं बचती थी तब वे अपनी कालजयी कविताओं की पंक्तियां गुनगुनाते हुए अंधेरे कमरे में बैठकर हंसते थे। ऐसे थे हमारे निराला। इस छोटे से संस्मरण में केवल निराला जी का व्यक्तित्व ही नहीं शिवपूजन जी की संवेदनशील दृष्टि भी झलकती है। देश की आजादी के बाद सन 1950 से 1959 तक वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक पत्र के संपादक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 21 जनवरी सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान साहित्य सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। इसके प्रायोजक थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों की गाए मालवी लोकगीत।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, और आप सुन रहे हैं कलाकार सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। आई श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दें, आज सवेरे 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बोन मेरो ट्रांसप्लांट से संबंधित।

0: जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शिवानी पटेल से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 13 अगस्त, समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 13 अगस्त, समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 KHz पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वंदना दुबे की गाई चंद रचनाएं। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं नानक जी के लिखे इस भक्ति गीत से।

आइए अब आपको सुनवाते हैं संत मीराबाई का लिखा ये भजन, पिया पिन सुनो आज मारो देश।

संत मीराबाई के लिखे और वंदना दुबे के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नरेंद्र धर का सरोद पर बजाया राग जौनपुरी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र धर का सरोद पर बजाया राग जौनपुरी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। सवेरे के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

0: प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। अनूपपुर जिले में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैलियों की धूम है। जिले के पहाड़ी क्षेत्र पवित्र नगरी अमरकंटक से लेकर कोयलांचल क्षेत्र और जिले की सीमा में बसे बनगवा, डोला, डुमरकछार, बिजरुई, कुतमा, पसान सहित जिला मुख्यालय अनूपपुर में तिरंगा रैलियां जोश और उत्साह के साथ निकाली जा रही हैं। रैलियों के दौरान भारत माता की जय के घोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया है। जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली निकालकर

0: राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। देशभक्ति के नारों और गीतों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने हर घर तिरंगा अभियान की गतिविधियों को निरंतर आयोजित करने तथा कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल होंगे। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान भी 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण तथा शासकीय सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पूर्व निर्धारित स्थान पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 14 अगस्त को ITI कैंपस अनूपपुर में द्वितीय शिविर आयोजित होगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। उप संचालक कृषि अजित कुमार ने जिले के किसानों से विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए बिना विलंब अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। वहीं नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा पदभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने जिले के चारों विकासखंड अनूपपुर कोतमा पुष्पराजगढ़ और जैथरी स्थित अस्पतालों का निरीक्षण किया और मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर रत्नाकर झा ने 10 अगस्त को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक को लेकर विभागवार लंबित प्रकरणों और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उसकी समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को अपनी टीम को सक्रिय रखते हुए कार्यों की नियमित निगरानी और दैनिक प्रगति रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए। 11 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय से NIC सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के 24,130 हितग्राहियों के खातों में 1,44,78,000 रूपए की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संबोधन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। वर्षा ऋतु में मौसमी और जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएमएचओ डॉ. अलका तिवारी ने बताया कि बारिश के मौसम में सर्दी खांसी बुखार वायरल संक्रमण दस्त उल्टी और टाइफाइड सहित जलजनित और खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही नहीं बरतने और स्वयं दवा लेने के बजाय निकटतम शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सीय परामर्श लेकर उचित उपचार लेने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों ऐतिहासिक धरोहरों संस्कृति नदियों झरनों मंदिरों किलों और महलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लपटा की टीम ने प्राप्त किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन।

सभी रसिक श्रोताओं को मोना ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं तैयार हो जाइए अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए अपने रेडियो सेट पर अपने नाम के साथ। तो तबले की थाप सितार की झनकार के साथ लेकर आई हूँ मैं वो गीत जो है आपकी अपनी पसंद।

तो कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं शब्बीर कुमार कविता कृष्णमूर्ति की सुमधुर आवाज से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, SH बिहारी की शब्द रचना, फिल्म का नाम तेरी

0: इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखा था बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशि कांता का। माशाल्लाह रेडियो श्रोता संघ से अनीस उल्ला मंसूरी, श्रीमती कौशल जहां मंसूरी, शमीमुल्ला, श्रीमती नसीम, अब्बे हबीब, सलीला मंसूरी, बेबी मंसूरी, शन्नो, श्रीमती महनाज, गुंजा, सूरी, करिश्मा, काजल और मंताश मंसूरी का। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तानी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर का ये फरमाइशी पत्र था। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा का। नीरज मंडलोई, रमेश बघेल, नानक बड़ोले, एम एस राठौर का ये फरमाइशी पत्र था हमारे पास में। छपड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो का। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले का।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सो योर प्लेस और माइन।
6: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
5: कॉन्डम? लेकिन हम तो
6: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
5: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

जनता हवलदार फिल्म के इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखा है शाहू नगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, रोशनी, स्वीटी, बेबी प्रियांशी, विशाल तथा चेतन मनवर ने। अनिल कौचाली, सबिहा, सुषमा, स्मिता, श्वेता, राखी और पूजा ने गुमाश्ता नगर इंदौर से। मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राज राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार ने नई सड़क शाजापुर से फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश ने। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंद किशोर और दीपक कांसोटिया ने। जयराम प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट का। साथ ही एक और फरमाइशी पत्र भोकरी तालुका रावेर से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी का। और बुरहानपुर ग्राम मोहत से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन और तैमूर तड़वी का। ग्राम मोहत से ही भैया तड़वी, रीना, सनी, रोजूबाई, परू, मुबारकबाग, विलास, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारे का। श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन। जो नए श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं वे भी हमें अपने नाम के साथ अपने फरमाइशी गीत की फरमाइश इस कार्यक्रम के लिए कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए या फिर पेन और पेंसिल लीजिए, कागज़ उठाइए और लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर 452001। तो हम चाहते हैं कि नए श्रोता भी हमसे जुड़े और जो पुराने श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं उनसे भी हम फरमाइश करना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि अपने जो फरमाइशी गीत हैं वे हमें हर तरह के गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी फरमाइशों को हम ज़रूर पूरा करें।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे तवायफ फिल्म का ये गीत। हसन कमाल ने इस गीत को लिखा था और रवि का संगीत था। इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र था पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी का। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, सरिता और एकांश का। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता। अकार हार्स बहादुर नगर नागपुर से शैलेश, वैशाली, सुमिता और ध्वनि गावणकर का। बी आर राजश्री, रौनक, दिव्यांश, रोशनी, धीरज, सुवती, रोनी, निधि का सोमानी नगर इंदौर से। नांदेड़ जिला वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई चैताली और प्रीति चांदणे का। शुगर फैक्ट्री तहसील उमरखेड़ से मिलिंद खंटारे, भारती, नागसेन खंदारे, प्रीतम कुमार, सारा, स्वाति, अश्विनी, धम्म मित्र, एम के खंदारे और समस्त खंदारे परिवार का। क्रांतिनगर नांदेड़ से प्रज्ञेश गढ़वारकर, कंचन, नाथराव, सौभाग्यवती, शांताबाई, प्रणाति, आदिव्य, आरवी, अभिजीत, लक्की, स्पंदन और समस्त वड़गांवकर परिवार का। सपना संगीतारोड़ इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंके, साक्षी, मनन और तानिया का। ओमकारेश्वर रोड ग्राम थापना जिला खंडवा से ज्योति भदौरिया, ठाकुर राजेंद्र सिंह भदौरिया, उदय सिंह भदौरिया और अश्विन भदौरिया का। कमर कॉलोनी बड़वाहा से ही प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली का।

मनहर और साधना सरगम के सुमधुर स्वर में आप सुन रहे थे घुंघरू फिल्म का ये गीत। अनजान ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र मिला था सनावास जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, कृतिका काव्यांशी और श्रीमती प्रभा का। नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े, शीतल निमाड़े, वंशिका, शुभांगी, खुशी, दिव्यांश निमाड़े, रीता पवार, राजेश पवार, हैप्पी, डीनू और समस्त निमाड़े परिवार का। घंटाघर चौक से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया का। पत्सिगर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्मी, अनिता, दियान और जियांश मटाई का। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी और मास्टर मनीष का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, सरिता का। सर्वानिया महाराष्ट्र से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा, मधुसूदन पाटीदार और यशस्वी पाटीदार का। छिपा कॉलोनी खंडवा से यूनुस खत्री, सादिक और अयुब खत्री का। जायसवाल निवास गांधी चौक पंधाना से संतोष भाई जायसवाल, श्रीमती मधु जायसवाल का।

0: तेजाब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमारे पास फरमाइशी पत्र है इस गीत के लिए। गंगानगर खरगोन से शिवराम धुरकरी, प्रमिला पूर्वी, दादू नन्नू, राम धुरकरी, यश और कुश धुरकरी का। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबली, राजदीप राशि, श्रीमती शीतल राजेश का। लाबरा भेरू से अनिल बामानिया, प्रमिला नंदिनी, मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामानिया परिवार का। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत का, बोरखेड़ पित्रामल जिला उज्जैन से। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा का। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी का। कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हेप्पिका। दुबिहा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल का और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय का। कृष्णवा कॉलोनी से नियाज मोहम्मद मंसूरी और साथियों का।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सड़क फिल्म का गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा है जरूर वरूर से बाबा साहब वड़ोदे, चंद्र पवा, नागपुर से मीनाक्षी चरपे और रजनी कनीरे का। कनेर मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का ये फरमाइशी पत्र है। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश का। मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा का, उपाध्याय नगर देवा से, राजाराम नगर देवा से, राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल का, रूपाखेड़ी से हरिराम माली, विष्णु, कपिल और निरंजन का, सुपरमार्केट से प्रकाशन जसवानी, पंकज और सनी का, उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान का और जेल रोड देवा से नवीन वर्मा और बल्लू वर्मा का। दुबई की बगीची इंदौर से अमृता रायकवार, नितिन, सरिता, कृष्णा, महेश और अहिल्याबाई रायकवार का। सुदामानगर इंदौर से अनिल भंडारी, उषा भंडारी, समता और चित्रा का।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खलनायक फिल्म का ये गीत, मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र है यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश सुनीता और मुस्कान का। बन बघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश और अंजलि का। डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली बेबी पूजा और प्रभा देवी का। हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक और मीका बिरक का गांधी चौक रोपड़ से। प्रक्षिक मेघना, तुषार, एकता, उत्कर्षा कामले, अरुण यवुलकर का चांदूर विश्वा कोल्हापुर से। और एक और फरमाइशी पत्र है इसी गीत के लिए हमारे पास जयराम प्लॉट से, माफ कीजिएगा, शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी का। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जय स्नाइक, शोभा डागला और समस्त डागला परिवार का हनुमानगढ़ जंक्शन से। कृष्णबाग कॉलोनी से नियाज मोहम्मद मंसूरी और सभी साथियों का।

0: तो श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मोना ठाकुर को नमस्कार।
1: प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति रक्षा कवर की है।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी एक विषय के ऊपर और सुनवाते हैं आपको बहुत ही मीठे मीठे गीत। कार्यक्रम में आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि कबाड़, कचरे या किसी भी अनुपयोगी वस्तु से कुछ अच्छा, उपयोगी, सुंदर या कलात्मक बनाना। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद महोदया, मैं मुरैना मध्य से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
2: हरविलास जी, कैसे हैं आप?
3: आपकी दुआ इसी कृपा से बहुत अच्छी तरह से है।
2: क्या करते हैं हरविलास जी?
3: खेती किसानी करता हूँ।
2: अच्छा अच्छा, अभी क्या चल रहा है?
3: इस समय बाजरे की फसल खड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी फसल है।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पानी वानी ठीक से गिर रहा है?
3: बहुत ही अच्छा गिर रहा है।

0: इसी के काबिल गिर रहा है।
1: अरे वाह, तो कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारी, जहां आज का हमारा विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि किसी भी अनुपयोगी कचरा कबाड़ी चीज से कुछ अच्छा सुंदर कलात्मक बनाना। तो ऐसी कोई चीज आपने कहीं देखी हो या आप अपने घर में कभी कर चुके हो, आपके परिवार में किसी ने की हो, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे।
0: कुछ ऐसी मैंने देखे हैं, अपने घर में ही देखे हैं महोदया, जैसे कोई रद्दी कागज या पुट्ठा वगैरह होते हैं, जो लोग पंखा बीजना बना लेते, कुछ सजावट की चीजें बना लेते हैं, बल्ब वगैरह निकाल के उन्हें रंग भर के सजावट की चीज बना लेते हैं
1: जी,
0: इस तरह की चीजें देखी हमने अपने घर में।
1: कैसा लगता है आपको देखकर?
0: बहुत ही अच्छा लगता है, अनुपयोगी चीजों को उपयोग में लाना दोबारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: आपने भी कभी बनाया इस तरह का कुछ या आपके परिवार में किसी ने?
0: नहीं, मेरे परिवार में तो बनाया, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया कुछ ऐसा।
1: अच्छा, कभी कोशिश करके देखिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल करेंगे महोदया।
1: अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो आपको याद रह गई हो कि अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बना दिया?
0: हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, एक छोटा सा बच्चा था
1: जी,
0: 12-14 साल का, उसने बनाया था
1: जी
0: फ्यूज बल्ब लेके, और जाने किस तरह उसने क्या चीज लेके रेडियो में से क्या जोड़ के उसने बल्ब बना दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था मुझे।
1: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हरविलास जी आपसे बात करके, कार्यक्रम में इसी तरह फोन करते रहिए। बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद, नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, किन से बात हो रही है?
1: हाँ मैडम जी, ग्राम कनिया विकास खंड बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू से बात कर रही हूँ मैडम जी। आप
0: ध्रुवाराम साहू जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आज त्योहार भी मना रहे हैं, हरियाली त्योहार।
0: कौन सा त्योहार मना रहे हैं?
1: हरियाली का त्योहार, जिसको अपने क्षेत्रीय भाषा में हरेली का त्योहार बोलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, क्या होता है इसमें?
1: इसमें ये होता है कि इस त्योहार के आते तक जो किसान है खेतों में रोपा वगैरह हैं वो सभी काम पूरा कम पूर्ण हो जाते हैं, और आज के दिन जो किसान होते हैं वो अपने जो हल वगैरह हैं, उपकरण है, कृषि उपकरण, उनकी पूजा पाठ करते हैं मैडम जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और तरह तरह की पकवान भी बनाते हैं
0: जी,
1: जैसे चीला हो गया, इधर ठेठी खुरमी, इस तरह का जो बोलते हैं बड़ा वगैरह, इस तरह का त्योहार मनाते हैं मैडम जी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी आपके यहाँ होगी ये सब पूजा पाठ या फिर अभी चल रहा है?
1: नहीं, अभी चालू है मैडम जी, अभी तो शुरुआत है, बस जो पकवान बनाने का है ना वो कार्यक्रम चालू है अभी।
0: अच्छा।
1: और सबसे एक विशेष बात यह है कि जो बांस का जो गेड़ी बनाने का काम करते हैं बच्चे लोग, इसमें नृत्य भी करते हैं, चलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, वाह वाह वाह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस त्योहार की, आपको और आपके परिवार को।
1: आपको भी मैडम जी, और सुनने वाले हमारे जो सभी श्रोता मित्र हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हर दिन त्योहार की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय मैं आपको बता दूं, आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि कचरा कबाड़े किसी अनुपयोगी वस्तु से कुछ बहुत ही सुंदर सा कलात्मक या सजावटी सामान बनाना। तो ऐसा कुछ आपने कभी किया हो या फिर आपने किसी को करते हुए देखा हो?
1: हाँ,
0: तो हम उसके बारे में
1: बात क्या है, जो अपने पास कागज है तो कागज को क्या है पानी में भिगा करके टोकरी बनाए थे मैडम जी हम लोग।
0: अच्छा, पानी में भिगो कर, मतलब किस तरह से?
1: पानी में क्या है उनको भिगा दिए 2 दिन तक, उसके बाद क्या है कागज एक प्रकार से पूरा विलय हो जाता है उसमें पानी में
0: जी,
1: और किसी जो पात्र जो टोकरी बनाने था टोकरी डाल दी, पुराने वाली जो टोकरी है उसमें, तो जो कागज होते हैं उसी के अनुरूप ढल जाते हैं, उसी के अनुरूप आकार निकल जाता है मैडम।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फिर उसका इस्तेमाल भी किया आपने?
1: हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल करते थे मैडम जी।
0: अच्छा, और इसके अलावा कोई और वस्तु जो आपने किसी और को बनाते हुए देखी हो?
1: अब पुराने वस्तु ऐसे तो है मैडम जी, इधर बांस वगैरह से ऐसे तो कलात्मक कृतियां बनाई जाती है
0: जी।
1: हाँ बनाते ही हैं, जैसे सूप वगैरह बनाने हैं, टोकरी बनाना है, वो करते ही हैं
0: जी।
1: हाँ, और एक और है मैडम जी, जैसे हम लोग इधर अभी अभी चलन में है, कुछ देखने को मिलता है, जैसे खुमरी बोलते थे हम लोग, जो मोलाइन के पत्ते होते थे उसको डाल के जैसे छाता नहीं होते थे, छाता से बढ़िया जो रोपा लगाने वाले हैं या फिर जो अहिर जाति के हैं, गाय चराने वाले, मवेशी चराने वाले, वो उसको उपयोग करते हैं मैडम जी।
0: पत्तियों से बना छाता?
1: हाँ, पत्तियों से बना छाता, वो क्या है जो बांस का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो पत्ते होते थे मोलाइन के जो पत्ते बोलते हैं
0: जी,
1: उसको डाल के रखते थे।
0: अरे
1: वाह, उपयोग करते थे मैडम जी। क्या है मड़ई मेला जब होता है ना, तो उसको जो हमारे जो अहिर जाति के हैं, राउत जाति के जो लोग भाई लोग हैं
0: जी,
1: वो नृत्य करते हुए जाते हैं मैडम जी, मतलब ये भी एक संस्कृति में शामिल है हमारे यहाँ का
0: जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा ध्रुवाराम जी आपसे बात करके, आपके त्योहार की हरेली त्योहार,
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम जी, आपको
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपके जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, भोपाल है, वहाँ कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और समय समय में क्या है विषय परक जो जानकारियां हैं, और कहा जाए तो मैडम जी जो आकाशवाणी है वो हमारे संस्कृति का रक्षक भी है, परिचायक भी है, कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, उत्सव हो, उससे पहले हमको जानकारी मिल जाती है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुवाराम जी।

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत
1: हेलो।
0: है
1: हाँ जी
0: जी।
1: नमस्ते,
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है,
1: योगेश जांगरे।
0: कैसे हैं आप
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: जी? कहाँ से बात कर रहे हैं,
1: बेमेतरा छत्तीसगढ़।
0: क्या करते हैं योगेश जी?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है,
0: खेती बाड़ी का काम है, तो अभी क्या लगाया हुआ है?
1: धान लगाए हैं।
0: धान लगाया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा। कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारे, जहाँ एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा
1: जी
0: करते हैं। तो आज का
1: जी
0: विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि किसी भी अनुपयोगी कचरा कबाड़े वस्तु का पुनः
1: हाँ।
0: उपयोग करके इस्तेमाल योग्य बनाना, उसे कुछ सुंदर सा कलात्मक बनाना।
1: नहीं, हम तो प्रत्यक्ष किए हैं,
0: जी
1: क्योंकि जिस समय डीएड की पढ़ाई कर रहे थे तो
0: जी
1: उसमें तो होता है ही था कबाड़ से जुगाड़, तो
0: हाँ
1: ग्रुप में करते थे और काफी चीजें उनसे सीखे हैं। और घर में भी जैसे हमारे यहाँ महिलाएं हैं
0: जी
1: तो चूड़ी वगैरह का बढ़िया साज सज्जा बनाती हैं, एक्स्ट्रा जो कपड़े वपड़े बच जाते हैं उनका अच्छे से बना लेती हैं, या
0: जी
1: डब्बा वगैरह जो होते हैं तो मतलब इस तरह से उपयोग हो ही जाता है। जैसे चूड़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, या थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो उनको मस्त डिजाइन बना के दीवार वगैरह में भी लगा देते हैं 100 पीस के तौर पर। जी
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके योगेश जी। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: रजनी सोनी मैडम, बहुत दिनों के बाद मैं फोन लगा। अब तो टाइम ही बदल गया है तो फोन ही नहीं लगता।
0: ओहो रजनी जी, आप कोशिश करते रहा कीजिए, जैसे आज लग गया है वैसे और भी लग जाएगा।
1: जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रजनी जी?
1: हम बालाघाट जिला गांव भिड़ी।
0: अच्छा, क्या करती हैं रजनी जी?
1: हम हाउस वाइफ हैं दीदी, घर का अपना काम तो बहुत लगता है।
0: रजनी जी, आज का कार्यक्रम जो है उसमें एक विषय है हमारा, जो है कबाड़ से जुगाड़िया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
1: जैसे साड़ी निकलती है अपनी तो
0: जी
1: अपन पाईमेटी बनाते हैं, ये जो जैसे पैर पोछने वाली जैसी अपन बनाते
0: हाँ
1: हैं, क्रूसिया से बना लिए, जैसे
0: जी
1: ब्रश से बनाते, ब्रश से भी बनती है।
0: हाँ,
1: हमारे यहाँ क्या है, जैसे साड़ी वाड़ी निकलती है, जैसे नई साड़ी है अपने को उपयोग नहीं करना है तो हम उसका भी बना लेते हैं।
0: अच्छा, तो और क्या
1: जी
0: क्या बनाते हैं? मतलब साड़ी के पोछे के अलावा भी कुछ कुछ बनाते हैं?
1: नहीं, जैसे पाई मेटी बनाना, जैसे क्रूसिया से बनाते हैं, या फिर अपने बहुत से अपने जैसे ब्रश में भी बनती है, ब्रश से भी बना लेते हैं।
0: ब्रश से क्या बनाते
1: जी,
0: हैं?
1: ये अपने मंजन करने के ब्रश रहते हैं ना, इससे भी
0: जी
1: बनती है पाई मेटी बहुत अच्छी अच्छी जी।
0: अच्छा, उसका क्या इस्तेमाल होता है उसके अंदर?
1: जैसे ब्रश है तो ब्रश को पीछे साइड से अपन थोड़ा सा छेदा करके, और उसमें एक अपने जैसे साड़ी की एक जो रहती है रस्सी, उसको बांध लो एक छोर को, और ऊपर साइड फिर जैसे अपन ये इसमें मरियान बनाते हैं, उसमें ऐसा उल्टी से फंदा नहीं डालते क्या, फंदा
0: अच्छा
1: डालते हैं और फिर वो फंदा दोनों हाथ से दोनों तरफ डालते हैं दो गोला से, फिर उसके
0: अच्छा
1: बाद उसको खसकाते जाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे गोल गोल गोल गोल कर

0: अपने सिलाई लगा लू,
1: अच्छा, अरे
0: वही
1: वाह,
0: टाई मेटी बन जाती, फिर जैसा कार की बनाना वैसी बन जाती।
1: अरे वाह रजनी जी, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आपने दी
0: जी
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए।
0: जी दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, मेरा नाम मैडम जसराम जाटव, जोराई से जिला शिवपुरी।
0: जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: हाँ मैडम, बढ़िया हैं।
0: अच्छा, कार्यक्रम का विषय मैं आपको बता देती हूँ। आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या कबाड़ से जुगाड़। ऐसी कोई भी पुरानी घर में पड़ी हुई वस्तु से कुछ नया या बहुत सुंदर सा कुछ बनाना।
1: कुछ लोग क्या है, जो खराब चीज होती है तो उसका कुछ खिलौना बना लेते हैं, कुछ बना लेता है, ऐसा होता है मैडम।
0: अच्छा, और इसके अलावा कुछ और देखा है आपने करते हुए किसी को?
1: पानी का जो बॉटल होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको कट करके नहीं, इसपे गुड़िया भी बना लेते हैं। गुड़िया बना के इसपे अच्छा लगता है, दिखने में अच्छी लगती है वो।
0: पानी की बोतल से?
1: हाँ, पानी की बोतल से गुड़िया बना लेते हैं। इसपे क्या है, इसको चीट चीट गए तो इसपे बना लेते हैं मैडम।
0: हाँ, और ये तो बड़ा अच्छा है ना ऐसा करना, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता। जो बाहर पानी की बोतलें मिलती हैं वो तो दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कचरे में ही जानी होती हैं। उससे अगर इस तरह का कुछ बना ली कोई तो कितनी अच्छी बात है, तो बड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है।
1: हाँ मैडम, अच्छा लगता है। क्या प्लास्टिक अपन फेंकते हैं तो भी क्या, बारिश का पानी जब जाता है इससे जमीन में पानी नहीं जाता।
0: जी जी
1: हाँ, तो हम तो मैडम क्या आस पास देखते हैं तो हम तो समझाते हैं जी लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक को फालतू नहीं फेंकना चाहिए, कचरे
0: अच्छा।
1: की वहाँ फेंकना चाहिए।
0: जी बहुत बहुत अच्छी बात है जसराम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
1: हाँ मैडम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी, चंद्रवान नामदेव ग्राम पोस्ट देरी डिस्ट्रिक्ट छतरपुर एमपी से बात कर रहे हैं। दीदी
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो ठीक है, आप कैसी हैं मैडम?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं?
1: हम सिलाई का काम करते हैं दीदी।
0: अच्छा, क्या बनाते हैं, स्पेशलिटी क्या है आपकी?
1: हम पेंट टाइप पेंट सिलते हैं।
0: पेंट सिलते हैं आप?
1: हाँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चंद्रबान जी, कार्यक्रम जो है उसमें एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा करते हैं, तो आज का विषय मैं आपको बता दूं। आज का विषय है कबाड़ से जुगाड़ या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें हम कोई भी पुरानी रखी हुई वस्तु जो घर में इस्तेमाल में नहीं आ रही उसका कुछ नया बना लेते हैं और कुछ उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं।
1: हमारे यहाँ तो आते हैं खरीदार, उनको बेच देते हैं और हमारा बच्चा बना लेता है कबाड़ में से कुछ न कुछ नया सामान की जुगाड़ बना लेता है। उसने एक जो ऊपर बनाया है जैसे रेडियो था, उसकी चुम्बक, उसकी मशीन से उसने एक बात चिप डाल ली मोबाइल की तो बचता है ऊपर।
0: अच्छा, मतलब पुराना जो खराब रेडियो था उससे उन्होंने स्पीकर जैसा कुछ बना लिया।
1: हाँ, बूफर बना लिया, उसकी चम्मक भाई, उसकी बाद मशीन होती है जो टाँके लगे जाते, हमने नया रेडियो लिया है, बेकार होगा तो सो बोलो जब चम्मक निकाल के हम बूफर बना ले रहे।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, इसके अलावा उसने एक बहु बनाया था, क्या बोलते ये और डब्बा बना ले तो चकाका लगा कर चला उस रात
0: पुराने डब्बे में पहिए लगा करके उसको गाड़ी जैसा बना लिया।
1: हाँ
0: खिलौना हो गया।
1: हाँ खिलौना हो गया उसके लिए।
0: कितना बड़ा है आपका जो बच्चा है?
1: हमारा बच्चा 10 साल का है।
0: अच्छा, 10 साल की उम्र में उन्होंने रेडियो से अपना दूसरा स्पीकर जैसा बना लिया।
1: हाँ।
0: क्या नाम है आपके बच्चे का?
1: हमारे बच्चे का नाम है कृष्ण नामदेव।
0: कृष्ण नामदेव।
1: हाँ, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से ट्राई कर रहा है कि फोन लगा लिया जाए, भोपाल में व्यस्त बता रहा
0: जी जी जी जी बहुत सारे कॉलर्स का फोन आता है, पर बहुत अच्छा किया आपने लगाया फोन, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: हमको भी, हम सब आकाशवाणी से जो है भोपाल छतरपुर का तो हम दिन भर रेडियो सुनते हैं, अभी आपका कार्यक्रम सुन रहे थे तो फोन रिसीव हो गया, सुनने की पहले बात कर लिया, अभी बंद कर दिया था बात भाई जा तो फिर चालू कर ले रेडियो।
0: जी जी जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं, हमें फोन करते हैं और
1: आप लोगों की
0: सुनते
1: आवाज बहुत बढ़िया लगती है, बोलने का तरीका इतना बढ़िया लगता है कि दिन भर अपना सिलाई करते रहे, दिन भर रेडियो सुनते रहे।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं
0: जी नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मैं रतलाम से, मैं सरला चावड़ा बोल रही हूँ।
0: सरला चावड़ा जी रतलाम से।
1: जी हाँ,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ साहब, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ,
1: बहुत बढ़िया
0: जी। क्या करती हैं सरला जी?
1: जी मैं टीचर थी, अब मैं टीचर नहीं हूँ, पहले टीचर थी, अब रिटायरमेंट हो गया मेरा।
0: अच्छा, रिटायर्ड टीचर हैं आप।
1: जी हाँ, और मैं कक्षा एक में पढ़ती थी, तब से ही मैं इंदर भोपाल की और विविध भारती की फैन हूँ 1971 से।
0: अरे वाह सरला जी, बहुत अच्छा लगता है इतने पुराने जो हमारे श्रोता होते हैं उनसे बात करने में।
1: जी हाँ
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए आकाशवाणी को।
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच
0: जी, कार्यक्रम का विषय मैं आज का आपको बता दूं, कार्यक्रम का विषय है कबाड़ से जुगाड़ या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
1: कुछ क्रोशिया से बना लेते हैं, कुछ पेड़ पौधे से बना लेते हैं, कुछ छोटे बच्चों के लिए खिलौने, उनके फ्रॉक वगैरह डिजाइन वगैरह,
0: अच्छा,
1: लेस वगैरह लगा के बना लेते हैं। एयरफोर्स बनाना छोटे बच्चों के लिए,
0: जी,
1: कुछ भी मतलब उपयोग में आने वाले, उनके गुड्डे गुड़िया के कपड़े वगैरह सिलना, लेस वगैरह लगा देना, भगवान के कपड़े सिल देना, उनकी पोशाक सिल देना, नए नए छोटे मोटे कपड़े से।
0: अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है सरला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के
1: जी
0: लिए।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति रक्षा कवर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। भोपाल श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। ये प्रदेश भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत।

यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम गीत का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। बोल इंदिवर के हैं, संगीत है जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मिस्टर नटवरलाल का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत फिल्म कभी कभी से आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। खयाम का संगीत है और गीत लिखा है साहिर ने। पसंद आप सभी की नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की।

आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया। आप सभी की फरमाइश है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनी के इस गीत की, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
7: और झूलते झूलते सुनते हैं
6: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: बिठूर गए त्रिकालज्ञ ज्योतिषी तात्या साहेब से पेशवा बाजी राव ने अपने सभासद मोरोपंत तांबे की पुत्री मनु के लिए सुयोग्य वर की तलाश करने का अनुरोध किया। मनु की जन्म पत्रिका से चमत्कृत तात्या दीक्षित ने उसके भावी की संभावनाओं को देखते हुए झांसी के विधुर राजा गंगाधर राव से मनु के पढ़ने का विधान निर्धारित किया। जन्म पत्रिका के संयोग मनु को झांसी बुला रहे थे।
1: बुंदेलखंड की एक मराठा रियासत है झांसी। बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल के कीर्ति गौरव से आप्लावित एक वीर भूमि, जहां के कण कण में आत्म बलिदानी रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं रची बसी हैं, जहां हवाओं में और दिशाओं में आला की अनुगूंज सतत स्मरण दिलाती रहती है।

भारत के हृदय प्रदेश की भूमि बुंदेलखंड से छत्रपति के उत्तराधिकारी मराठों के संपर्क का सिलसिला पेशवा बाजीराव प्रथम के काल से ही घनिष्ठ रूप से चला आ रहा था। छत्रपति शिवाजी ने युवक छत्रसाल को अपनी इतिहास प्रसिद्ध भवानी तलवार सौंपी थी और छत्रसाल ने इस अनूठी तलवार की गरिमा का मान बढ़ाते हुए 52 स्वातंत्र युद्धों में आक्रांताओं को इतिहास के न्याय का मजा चखाया था। बुंदेलखंड के कवियों ने कहा।

0: झांसी की रियासत इन्हीं महाबली छत्रसाल से राजा गंगाधर राव के पुरखों को मिली थी। अंग्रेजों के प्रभाव विस्तार के दौरान झांसी को भी ग्रहण लगा। पेशवा का प्रभुत्व संधि से तिरोहित हुआ।
1: झांसी के साथ हुई संधि की व्यवस्था के अनुसार रियासत के राजा गंगाधर राव थे और रियासत का कामकाज और प्रबंध कंपनी के कारिंदे चलाते थे, लेकिन गंगाधर राव झांसी के राजा थे।
0: गंगाधर राव विदुर थे और झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी तभी जन्म ले सकता था जब वे पुनर्विवाह के लिए राजी हों।
1: जन्म पत्रिकाएं मिल जाने के बाद तात्या दीक्षित ने राजा गंगाधर राव की विवाह के लिए सहमति प्राप्त की। निश्चय हुआ कि विवाह झांसी में ही होगा। मोरोपंत बिठूर छोड़कर झांसी आ जाएंगे और दरबार में सामंत बनाए जाएंगे।
0: इस तरह मनु का नाता बिठूर से छूटा और झांसी में उसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अब न बाला गुरु की व्यायामशाला थी, न पेशवा बाजीराव के स्नेह की छाव, न राव साहब, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे बचपन के संगी साथी, न गंगा का किनारा, न बाबुल का देश।

अब मनु झांसी की हुई, उसे नया संबोधन मिला लक्ष्मीबाई, नया विरुद्ध मिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।

0: सुंदर, बहुत सुंदर। नृत्य में तो तुमने अद्भुत प्रवीणता प्राप्त की है। क्या नाम है तुम्हारा?
1: रानी साहिबा, मेरा नाम मुंदर है और ये है सुंदर, ये काशीबाई, ये रही झलकारी। हम सब आपकी दासियां हैं श्रीमंत, आपकी सेवा टहल के लिए।
0: दासियों की आवश्यकता मुझे नहीं है मुंदर, मैंने अपना काम अपने हाथ से करना सीखा है।
1: ऐसा मत कहिए रानी साहिबा, फिर हमारा क्या होगा, हम तो बिना काम के हो जाएंगे। राजा महाराजाओं की तो शोभा ही दास दासियों सेवक चाकरों से बनती है। राजा गंगाधर राव ने आपकी सेवा के लिए 16 दासियां नियुक्त की हैं।
0: ये सभी मेरी 16 सखियां होंगी, बिना किसी छुटाई बढ़ाई के, बराबर की मेरी सखियां।
1: सेवा टहल अगर आपको रुचिकर नहीं है महारानी, तो हम गायन और नृत्य से आपका मनोरंजन करेंगी और आपका मन बहलाएंगी।
0: लगता है झांसी में नाचने गाने का कुछ ज्यादा ही चलन है। राजा साहब की रंगशाला के चर्चे तो दूर दूर तक हैं।
1: ठीक ही सुना है सरकार ने, हमारे राजा साहब गुणों के पारखी हैं और कलाओं के संरक्षक भी। गायन, वादन, नृत्य और कविता खूब फल फूल रही है झांसी में। एक से एक गुड़ी है झांसी के दरबार में, आप देखेंगी।
0: हम देख रहे हैं मुंदर, लेकिन हम जो देख नहीं रहे वो भी है कि नहीं तुम्हारी इस झांसी में?
1: वो क्या है सरकार?
0: हथियार, आत्मरक्षा के लिए हथियार। सैनिक तलवार, तमंचे, तोप, बारूद, गोले, घोड़े, इनके बिना तो राज्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। राजा और रियासत की शोभा तो इनसे ही बनती है।
1: शोभा के लिए ही तो है सरकार।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
1: झांसी के राज में फौज, पलटन, हाथी, घोड़े, हथियार और असलाह सभी कुछ है सरकार, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, सिवाय इसके कि सवारी के आगे पीछे चले शोभा के जुलूस में। महारानी
0: क्यों?
1: फिरंगियों से अपनी संधि है महारानी, फिरंगियों की फौज झांसी में रहती है, सेंत मैत में नहीं। झांसी का राज्य उनका खर्चा उठाता है, इसके बदले में उनकी फौज राज्य की रक्षा के लिए तैनात है।
0: तुम्हारे राजा साहब को तो फिर कुछ करना नहीं होता होगा, मौज करते होंगे।
1: करना क्यों नहीं होता रानी साहिबा, राजकाज के कुछ कम झंझट होते हैं, वो राज करते हैं, रियाया की देखभाल, न्याय, बंदोबस्त, उनकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, राजा के लिए मौज की फुर्सत ही कहाँ है।
0: राजा की रंगशाला के चर्चे दूर दूर तक हैं, वहां क्या होता है?
1: रंगशाला में और क्या होगा, नाटक होता है महारानी, राजा खुद भी हिस्सा लेते हैं।
0: सचमुच नाटक में खुद भी हिस्सा लेते हैं? बड़ा काम है, क्या करते हैं नाटक में?
1: कभी दुष्यंत बनते हैं तो कभी भरतरी, कभी।
0: बस बस, मैं जान गई, राजा साहब जो है नहीं वो नाटक में होते हैं। हमारे उधर अवध में भी एक नवाब हैं जो इंदर सभा रचाते हैं। पता नहीं इस देश के राजाओं और नवाबों को कौन से शौक हैं, वो आज को भूल गए हैं। उठती हुई आंधियों को अनदेखा करके वो कल्पना की रेत में आंखें छिपाए बैठे हैं। तो ऐसी है झांसी की रंगशाला।
1: सरकार, रंगशाला में मोतीबाई और जूही भी हैं।
0: कौन है वो?
1: रंगशाला के अभिनेत्रियां हैं, क्या नाचती हैं सरकार, कभी देखेंगी तो कहेंगी क्या बात है। राजा की रंगशाला की शान है ये दोनों, मोती और जूही, और ध्रुपद धमार होरी के गायक उस्ताद मुगल खां।

0: हमें इन बातों की समझ नहीं है मुंदर। कलावंतों गुणवंतों का साथ कभी मिला नहीं। हमारी शिक्षा दीक्षा तो बाला गुरु के अखाड़े में हुई है। हमारे संगी साथी रहे हैं नाना साहेब, राव साहब और रामचंद्र राव, जो तात्या टोपे के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पेशवा बाजीराव के बिठूर में ये सब नहीं होता था। पेशवाई धोखे से फिरंगियों ने छीन ली। इसका संताप था, शोक था। और हम कल्पना करते थे, तदबीरें सोचते थे मातृभूमि की तकदीर बदलने की। इस रंगारंग जीवन के लिए फुर्सत ही कहां थी। झांसी आकर या झांसी की रानी बनकर हम अपने स्वातंत्र स्वप्न को तो स्थगित नहीं कर सकते। सुनो सुंदर मुंदर कासी।
1: हुकुम सरकार।
0: हमारी सहेली बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो हम कहें।
1: आज्ञा करें सरकार।
0: तुम्हें व्यायाम करना होगा, प्रतिदिन अखाड़े में मलखंब और कुश्ती का अभ्यास करना होगा, घोड़े पर सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाना भी आना चाहिए।
2: ये तो बड़े कठिन काम है सरकार, और फिर औरतें ये सब कहाँ करती हैं?
0: जब झांसी के पुरुष ये सब भूल गए हैं तो स्त्रियां करेंगी।
1: करेंगी सरकार, करेंगी। आपकी आज्ञा सिर माथे सरकार। मगर रानी साहिबा ये सब हमें आता ही नहीं, सिखाएगा कौन?
0: हम सिखाएंगे। और फिर बिठूर से बाला गुरु जी को बुला लेंगे।
1: बालाजी तो पुरुष हैं, हमारी लाज शर्म मर्यादा का क्या होगा सरकार?
0: तुम्हारी मर्यादा की रक्षा के लिए ही तो यह विधान है सखी। स्वयं इतनी शक्ति प्राप्त करो कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत न कर सके। यही युग धर्म है।

0: महाराज अधिराज राव गंगाधर राव की स्त्री चरणों में प्रणाम। फिरंगी हाकिम कप्तान गॉर्डन दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं सरकार।
1: लगता है फिर कोई फरमान लेकर आए हैं, आने दो।
0: जो आज्ञा सरकार।
1: आइए गार्डन साहब, आइए, पधारिए पधारिए। सब कुशल तो हैं? आसन ग्रहण करें। कहिए कैसे आना हुआ?
2: सब आपकी कृपा है। शुक्रिया शुक्रिया। किसी खास कारण से तो नहीं राव साहब, मैं तो आया था ये बतलाने के लिए कि कल आपका नाटक बहुत अच्छा रहा।
1: जी आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे कलाकारों का कमाल था ये सब।
2: लेकिन क्या कहते हैं वो उसे, हाँ डायरेक्शन वो तो आपने किया था ना, सुर ताल अभिनय को साधने का बड़ा काम। वाह वाह।
1: धन्यवाद। ये तो हमारा ही काम है, सूत्र संचालन, राजा और नायकों का, और खेल में खिलाड़ियों का। कौन अभिनेता कब और कहाँ क्या करेगा ये तो सूत्रधार ही निश्चित करता है।
2: ओ दुरुस्त फरमाया आपने राजा साहब, दुरुस्त फरमाया। लेकिन नाटक की इबारत तो लिखी हुई होती है ना, उससे बाहर तो आप ही नहीं जा सकते। और मैंने तो सुना है कि आपके धर्म में सब कुछ पहले ही तय और लिखा हुआ है, रत्ति भर भी इधर उधर नहीं होने को सकता।
1: आप कर्मफल की बात कर रहे हैं गॉर्डन साहब? हाँ हम मानते हैं कि कर्मों का फल पहले से तय है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये तो हमारी जीवन दृष्टि है, इसीलिए हम अच्छे अच्छे काम करते हैं।
2: वेल बेशक नाटक खेलना भी एक अच्छा काम है।
1: गॉर्डन साहब हम सिर्फ नाटक नहीं खेलते, राज प्रबंध के दूसरे दायित्व भी हम पर हैं। हमारी रैयत हम पर विश्वास करती है, हम उसके प्रतिपालक और संरक्षक हैं।
2: कंपनी बहादुर की सरकार इसे मंजूर करती है राजा साहब, आप हमारे दोस्त और साथी हैं। आपको हमने झांसी का राजा तस्लीम किया है और राजकाज में हाथ बटाने के लिए फिरंगियों की फौज आपकी सेवा में तैनात है।
1: लेकिन उस फौज का खर्च तो झांसी को उठाना पड़ता है, हमने अपना एक बड़ा इलाका उसकी उगाही के लिए आपको दिया है।
2: वेल, आप अपने कारिंदों को भी तो तनख्वाह वगैरह देते हैं ना, देते हैं ना, इसमें अजीब क्या है? फिर फिरंगियों की फौज आपके कितने काम आती है।
1: लेकिन वो तो आपके लिए लड़ेगी गॉर्डन साहब, हमें तो हर हाल में अपने ही सिपाहियों का भरोसा है जो हमारा नमक खाते हैं।
2: नमक? नमक यू मीन सॉल्ट? नो नो नो नो नो राजा साहब, वफादारी का ये सूल अब नहीं चलता, समाना बदल रहा है। अब लड़ने वालों को रुपया चाहिए, रुपया दौलत। राजा साहब दौलत ही एक अकेला मकसद है।
1: लेकिन लेकिन ये एक व्यापारी का दृष्टिकोण है, वीरता का नहीं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता गॉर्डन साहब।
2: वेल अब तो हो रहा है राजा साहब, कितने

0: निश्चिंत हैं अब आप, सारी चिंताएं हमारे सिर, और आपके पास बस फुर्सत ही फुर्सत, आराम ही आराम। नाटक खेले या फिर शिकार करें, पूरी तरह स्वतंत्र।
1: नहीं गॉर्डन साहब, नहीं, स्वतंत्रता की यह समझ हमारी नहीं है। वास्तव में आप में और हम में सिर्फ चमड़ी के रंग का ही फर्क नहीं, और भी कई अंतर हैं। हमें लग रहा है कि यह साथ ज्यादा नहीं निभेगा, आमना सामना तो होना ही है।
0: वेल, मैं उम्मीद करता हूं राजा साहब हमारी दोस्ती बनी रहेगी। आखिर हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपके लिए हम अपनी जान दे देंगे।
1: और बदले में जान ले भी लेंगे, यही तो सौदेबाजी का चलन होता है, इस हाथ ले उस हाथ दे।
0: ओ, इन बातों को छोड़िए राजा साहब, और कुछ बताइए, रानी साहिबा कैसी हैं?
1: कैसी हैं? अच्छी हैं। ये आपकी दिलचस्पी का विषय तो नहीं है।
0: ओ दोस्त हैं हम आपके, इसीलिए घर परिवार की खबर तो रखना ही चाहिए ना। सुना है कि रानी साहिबा ऐसे काम करती हैं जो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए।
1: जैसे?
0: तीरंदाजी, तलवारबाजी। सुना है वो झांसी की पुरानी थोपें ठीक करवा रही हैं और गोला बारूद ठलवा रही हैं।
1: काफी जानकारी रखते हैं आप।
0: झांसी का बच्चा बच्चा जानता है कि रानी साहिबा औरतों की एक पलटन तैयार कर रही हैं।
1: ये आपका विषय नहीं है गॉर्डन साहब।
0: बेहद भी मुआफ कर रहे हैं राव साहब, कंपनी सरकार जानना चाहती है कि इस तैयारी का मकसद क्या है, किसके खिलाफ लड़ेगी औरतों की पलटन।
1: आप जमा खातिर रहें, आप तो हमारे दोस्त हैं, है ना? आपसे लड़ने का तो सवाल ही नहीं है।
0: ओ बेशक बेशक, मगर हमने आपसे वायदा कर रखा है कि अगर आपको लड़ना पड़ा तो हम भी लड़ेंगे, ठीक है ना राजा साहब? राजा साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि झांसी की रियासत में रानी साहिबा का शुभागमन किसी कारण से हुआ है।
1: कैसा कारण?
0: यही कि रियासत के उत्तराधिकारी को वो जन्म दें, वो भी बेटा जो आपके बाद झांसी की गद्दी संभाल सके। कंपनी सरकार को इसकी बहुत चिंता है, बहुत चिंता।
1: लेकिन हमारे घरेलू मामलात की चिंता कंपनी को नहीं करनी चाहिए।
0: वेल, ठीक फरमाते हैं राजा साहब, ठीक फरमाते हैं। हम उनकी चिंता भी नहीं करते, लेकिन ये घरेलू मामला नहीं है राजा साहब, इससे रियासत का, रियासत की रियाया का और हमारा भी संबंध जुड़ा हुआ है। आखिर हम ही तो ये तय करेंगे कि झांसी की गद्दी पर कौन बैठे।
1: ये तय करने वाले आप कौन होते हैं?

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की तीसरी कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगारों के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। नौका तिरंगा यात्रा में 100 से अधिक नावों पर सवार होकर युवा खिलाड़ी प्रतिनिधि और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर सहभागिता की। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। महापौर मालती राय ने आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं पूरे प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी कि 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 1 बजा है। लीजिए अब सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत, अभिनंदन और वंदन। महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों को सुषमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं जब हौसले ऊंचे हो तो मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कदम उसे छू ही लेते हैं। जी हाँ सखियों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में बात उन होनहार खिलाड़ियों की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में तिरंगे की शान को बढ़ाया। ग्लासगो में आयोजित इन खेलों में भारत ने कुल 39 पदक, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सखियों, इन उपलब्धियों में हमारी महिला खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मीराबाई चानू, साक्षी, प्रीति, प्रिया, अरुधंती चौधरी, लवलीना, शर्मिला, जैस्मिन को मिली सफलता हमें यही सिखाती है कि प्रतिभा को अगर अवसर मिले ना तो बेटियां भी बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकती है। जरा सोचिए ना सखियों, इन खिलाड़ियों की सफलता के पीछे सिर्फ उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि घंटों की मेहनत, अभ्यास, अनुशासन और मोबाइल जैसी चीजों से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आदत भी रही होगी, है ना? यही बात सखियों, यही बात अपने बच्चों के संदर्भ में भी हमें समझनी होगी। आज बच्चों के हाथों में एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया। बच्चा रोए तो मोबाइल, खाना ना खाए तो मोबाइल, चुप ना बैठे तो मोबाइल, और धीरे धीरे ये मोबाइल बच्चों के लिए उनकी पूरी दुनिया ही बन जाता है। सखियों, मोबाइल और सोशल मीडिया अपने आप में इतने बुरे नहीं है, पढ़ाई, जानकारी और रचनात्मकता के लिए इनका इस्तेमाल बहुत उपयोगी हो सकता है। समस्या तो तब शुरू होती है जब स्क्रीन टाइम बच्चों के खेल के समय, पढ़ाई, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम की जगह लेने लगे। कई बार क्या होता है ना सखियों, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, शारीरिक गतिविधियों में कमी, नींद ना आना, इस तरह की कई सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों के लिए कुछ नियम बना दें, जैसे खाने का, सोने का और मोबाइल देखने का समय निश्चित कर दें। मोबाइल की जगह बच्चों को आउटडोर खेल के लिए प्रेरित करें, उनके साथ खेलें, किताबें पढ़ें, कहानी सुनाएं, चित्रकारी करें। इससे उनका

स्क्रीन टाइम तो कम होगा ही सखी, और वे कुछ नया भी सीखेंगे। बच्चों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा सखियों। हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, तो उन्हें समझना भी होगा और समझाना भी होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना सखियों। चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सखियो, हमारा स्वाधीनता दिवस आने वाला है और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन पर हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनके जज्बे और जुनून को सलाम करते हैं, तिरंगे को लहराकर और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाती हूँ फिल्म 83 से।

0: सखियो, आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि भी है। अहिल्याबाई होलकर भारत की महान शासिकाओं में से एक थी। उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय, सुशासन, जनकल्याण और धर्म संरक्षण को विशेष महत्व दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता में नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और न्याय में होता है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और सखियों, अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो हुनर को रोजगार से जोड़ने का काम करती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। सखियों, अगर आपके घर में कोई युवा पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में है या कोई नया हुनर सीखकर रोजगार या अपना काम शुरू करना चाहता है तो ये योजना उनके लिए उपयोगी हो सकती है। इस योजना के तहत युवाओं को उनकी रुचि और रोजगार की जरूरत के अनुसार अलग अलग कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे IT, हेल्थ केयर, रिटेल, ब्यूटी और वेलनेस, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की इसमें बहुत सारा चीज़ें सिखाई जाती है। इस योजना से जुड़ने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल पर जाकर उपलब्ध कोर्स और अपने नज़दीकी अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र से की जानकारी देखी जा सकती है और अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कोर्स को चुनकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सखियो, सरकार अवसर दे सकती है लेकिन उस अवसर को हुनर में बदलना हमारे अपने हाथों में है। तो इस योजना का लाभ ले, इससे जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और सखियो, अब सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है गर्भावस्था के दौरान पोषण। डॉक्टर विभूति त्रिवेदी से मनीषा नागदेवे की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार सखियों, गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है। इस दौरान माँ का ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी संपूर्ण विकास उसके खान पान और जीवन शैली पर निर्भर करता है। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि गर्भावस्था के दौरान आहार कैसा हो, किन पोषण तत्वों को भोजन में शामिल किया जाना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखें या किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। इन महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर विभूति त्रिवेदी, जो 20 साल से आहार विशेषज्ञ है और हमारा आज का विषय है गर्भावस्था में पोषण आहार। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था में सही पोषण क्यों आवश्यक है?
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्भावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर होता है एक महिला के जीवन में।
1: जी,
2: इस समय पे बहुत सारी शारीरिक बदलाव और पोषण की जो जरूरत होती है वो काफी डिमांडिंग होती है, काफी बढ़ी हुई होती है। तो इस दौरान सभी महिलाओं को अपने पोषण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ सफाई, दवाइयाँ और समय समय पे डॉक्टर को दिखाने का भी बहुत ज्यादा उनको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी जी, तो गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए?
2: गर्भावस्था में संतुलित आहार लेने के लिए कोई भी ऐसी कोई बहुत ही नायाब चीज़ें या कोई अलग से अपने को चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हम सभी अपने आसपास और अपने घर में जो रखी हुई चीज़ें हैं उससे अपना संतुलित आहार पूरा कर सकते हैं। उस समय अपने को विशेष रूप से आपको थोड़ा सा प्रोटीन आपका सामान्य तौर पे जो लिया जाता है उससे बढ़ा हुआ रहता है, थोड़ी कैलोरी की ज़रूरत बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ कुछ विटामिन मिनरल्स हैं, उन सभी की भी ज़रूरतें बढ़ जाती है।
1: जी, तो जैसे कि कहा जाता है डॉक्टर साहब कि गर्भावस्था में जो गर्भवती स्त्री उसको दो लोगों का खाना खाना चाहिए।
2: जी,
1: तो ऐसा होना चाहिए?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमको दो के लिए बराबर खाना है, तुम और खाओ, ऐसा हर गर्भवती स्त्री को ऐसा बोला जाता है कि आपको ज्यादा खाना है, दो के लिए खाना है। परंतु ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें मात्रा के हिसाब से दो का नहीं, वरन क्वालिटी वाइज अपने को दो के बराबर खाना चाहिए। इसमें मात्रा का थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखने के साथ ही साथ अपने को क्वालिटी वाइज, जैसे कि उतना प्रोटीन पूरा हो रहा है कि नहीं, उतना आयरन पूरा हो रहा है कि नहीं, उतना कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 पूरा हो रहा है कि नहीं, उसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं गर्भवती महिलाओं से ये कहूंगी कि दो के बराबर खाने के लिए सोचने के बजाय वो ये सोचें कि मेरा पोषण पूरा हो रहा है कि नहीं, मेरी जितनी मात्रा मेरे को इस दौरान सब्जियों की खानी चाहिए उतनी पूरी हो रही है कि नहीं, मेरा दूध का इंटेक उतना पूरा हो रहा है कि नहीं, मेरा दालों का मात्रा जैसे पूरा हो रहा है कि नहीं, अपनी जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं, इस बात पे ज्यादा फोकस होना चाहिए बजाय कि मात्रा को बढ़ाना।
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि विटामिन सारे होने चाहिए, भरपूर होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि गर्भावस्था में किन पोषण तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है?
2: गर्भावस्था के दौरान में अपने सभी जो जरूरत वाले पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कैलोरीज, आपका विटामिन रहते हैं, स्पेसिफिकली आपके आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी, फोलिक एसिड, इन सब की जरूरतें अपने को बढ़ी हुई होती हैं। और ये हम अपने जो खाने में चीजें होती हैं, जैसे कि दालें होती हैं।

0: हैं, साबुत दालें होती हैं, दूध दूध से बनी चीजें होती हैं, आपके कुछ सूखे मेवे से आप अपनी कुछ जरूरतें पूरी कर सकते हैं, कुछ अपने आहार में आप कुछ बीजे जो आते हैं आजकल, जैसे कि पपीते के बीज होते हैं, सूर्यमुखी के बीज होते हैं, इन सब से आप वो सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई चीज खाने की आवश्यकता नहीं है, पर जो अपने घरों में होती चीजें उसी सबको एक सुरुचिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से अपनी थाली में शामिल करके आप से बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं
1: जी। यानी सारी पोषक तत्व होने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में आप ले सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने जिससे भी बताया कि आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, तो इनका क्या महत्व होता है और कितनी मात्रा में हम ले सकते हैं?
0: बहुत ही जरूरी रहता है इन दौरान। आंकड़े ये कहते हैं अपने भारत के कि लगभग 50-52% महिलाएं हमारी एनीमिक होती है, मतलब कि हर दो गर्भवती महिलाओं में से एक महिला अपनी माइल्ड मॉडरेट या सीवियर एनीमिक होती है। और इसमें हम उनको उनकी जो घर में चीजें हैं उनसे पूरा करते हुए, जैसे कि हमको केवल जब हम ऐसा बोलते हैं एनीमिया, मतलब कि ऐसा होता है कि केवल आयरन ही की चीजों की जरूरत है, जबकि हमें अनीमिया से लड़ने के लिए हमें आयरन के साथ ही साथ जो दूसरे संतुलित चीजें हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन सी और अन्य खाद्य पदार्थ, अन्य मिनरल्स, विटामिन बी जो होते हैं, उन सभी की जरूरत होती है। तो आप थोड़ा सा अपने भोजन में जब आप खाना खाते हैं तो उसमें आप 2-4 बूंद नींबू की डालिए। आप ध्यान रखिए कि कम से कम नाश्ते में कोई दाल से बनी चीज हो, कोई हरे पत्ते वाली सब्जियां हो, और कोई आपके दोपहर के खाने में एक कटोरी दाल आवश्यक तौर पे हो। आप रंग बिरंगी सब्जियों का समावेश करें, आप ऐसा ना करें कि केवल एक ही एक सब्जी, जो मनपसंद चीजों का बहुत आपने देखा होगा कि इस समय महिलाओं को बहुत क्रेविंग होती है और वो केवल वही चीज खाना चाहती हैं जो उन्हें पसंद होती है, और बहुत सारी चीजें वो इस समय पे अवॉइड करने लग जाती हैं। तो मैं कहूंगी कि उनको थोड़ा सा रेसिपी में बदलाव करके उनको अपने भोजन में शामिल करते हुए अपने पूरे भोजन को संतुलित करना चाहिए
1: जी। तो ऐसी कौन सी खाद्य पदार्थ है जिससे बचना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
0: जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस दौरान महिलाओं को बहुत क्रेविंग होती है, और कुछ चीजें वो जो कि मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि वो कुछ चीजें बिल्कुल बंद कर देती हैं, या तो उनको पसंद नहीं आ रही होती है या फिर वो डरती हैं किसी चीजों से, तो बहुत सिलेक्टिव हो जाती हैं। और इस दौरान ये भी देखा गया है कि उनका बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाने लगती हैं, कई बार वो कुछ नहीं खाती हैं तो जंक फूड का इस्तेमाल उस दौरान पे ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड यानी कि जिसमें केवल मैदा हो, केवल तेल हो, तली गली चीजें हो और पौष्टिक तत्व कम हो, वो चीजों से थोड़ा सा अपने को बचना चाहिए
1: जी।
0: दूसरा, अपने को बाहर का खुला खाने से बचना चाहिए। अपने को अनपॉस्चराइज मिल्क, जैसे कि दूध आया है और वो कच्चा ही है, कई बार बहुत ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि वो जैसा आता है दूध वैसा ही उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो इस समय पे खासकर इस बात का ध्यान रखें कि वो दूध को गर्म करके लें, दैट मीन्स पॉस्चराइज्ड वाला दूध ही लें अपन। अच्छा। और बहुत तेल मिर्च मसाले वाले खाने से थोड़ा सा बच के रहेंगे, तो अपन इस दौरान आने वाली जो समस्याएं होती हैं उससे अपन बच सकते हैं।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो शाकाहारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन खाद्य पदार्थों को खाकर वो प्रोटीन की जो मात्रा है उसकी कमी है उसको पूरा कर सकती है?
0: शाकाहारी होने के साथ ही अपन गर्भावस्था की जो जरूरत होते हैं वो अपन पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जो प्रोटीन की अपनी जो भारतवर्ष का जो अपना ज्यादातर प्रोटीन का जो हमारा इंटेक है, जो विभिन्न विभिन्न दालें हैं, वो हमारा 50% इंटेक हमारा दालों से पूरा हो सकता है। बस आपको ये कोशिश करनी है कि विभिन्न प्रकार की दालें आप अपने नाश्ते में, थोड़ा सा अंकुरित मूंग मोठ हो अगर आप उसका थोड़ा सा चाटनुमा बना लें, या आप उसका चीला बना लें, या आप उसको और किसी फॉर्म में यूज करना तो उस तरीके से कर सकते हैं। और आवश्यक तौर पे एक एक कटोरी दाल अपन लंच और डिनर में अपन शामिल करें। इसके अलावा, दालों के अलावा हमारा महत्वपूर्ण जो हिस्सा प्रोटीन का आता है वो दूध और दूध से बनी चीजों से आता है, तो मुख्यतः

0: अपने को 2 ग्लास दूध अपने को लेना ही चाहिए, एक कटोरी दही लेना चाहिए अपने को, और जो तीसरा भाग है अपना वो थोड़े से मेवे जो होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, कुछ बीज हैं, ये भी कुछ हिस्सा हमारे प्रोटीन का आपको आपके प्रोटीन के प्रतिशत को पूरा करने में देते हैं। साथ ही साथ अन्य जो अनाज होते हैं, आप रागी है, आप ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, आप हर अनाज से भी आपका प्रोटीन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है। तो आपको सब चीजों का जब विविधता से अगर आप अपने भोजन की थाली को अगर आप सजाते हैं तो 100% आप अपने प्रोटीन के इंटेक को पूरा कर पाएंगे।
1: तो हम आखिरी में आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण पोषण संबंधी क्या संदेश होगा?
0: जी, मैं सभी महिलाओं से ये आग्रह करूंगी कि वो अपने गर्भावस्था के इस पीरियड को बहुत इंजॉय करें और अपने आराम का, अपनी दवाई का, अपने भावनात्मक जो हमारा हेल्थ होता है उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ें। पोषण की दृष्टि से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कम से कम, हमारा जो रिक्वायरमेंट आता है, जो हमारा गवर्नमेंट, हमारी जो संस्थाएं वो बोलती हैं, वो कहती हैं कि कम से कम 400 ग्राम रंग बिरंगी सब्जियां आपने को जरूर खानी है। तो आप चटनियों के फॉर्म में, सब्जियों के फॉर्म में, आप इसे अपने सलाद, रायता, इनके फॉर्म में आप उन्हें अपने खाने में जरूर शामिल करें। इसके साथ ही साथ कि दूध, दूध से बनी चीजें कितनी लेनी चाहिए, तो जनरली ये क्वेश्चन रहता है, तो अपने को 400 ग्राम दूध अपने को लेना चाहिए, 3 कटोरी दाल अपने को आवश्यक तौर पे लेना चाहिए, जो कि दाल, आप दाल मतलब मूंग की दाल, तुअर की दाल, इवन राजमा, छोले, चबले, या आपको ये दालें ऐसी नहीं पसंद आती है तो आप सूखी दाल बना सकते हैं, आप इनका चीला बना सकते हैं, आप इनको रोटी के आटे में मिक्स करके ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ अपने को 1 मुट्ठी भर करके थोड़े से सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, भुने चने हैं और सीड्स हैं, उनको अपने आहार में शामिल।
1: बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारी सखियों को दी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी सखियों हमने सुनी भेंटवार्ता, विषय था गर्भावस्था के दौरान पोषण। डॉक्टर विभूति त्रिवेदी से बात कर रही थी हमारी सखी मनीषा नागदेवे। सखियों, आज हिंदी सिनेमा की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा का जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी खूबसूरत अदाओं, दमदार अभिनय और बेमिसाल डांस से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी जी की। आज श्रीदेवी जी का जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं का ये बहुत प्यारा सा गीत। हमने लिया है फिल्म चांदनी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और बाबला।

0: सखियो अब समय है हमारे क्रम रूप लावण्य का। तो रूप लावण्य में आज बात करते हैं मुहासों की। सखियो किशोरावस्था हो या फिर पीरियड्स के आसपास का समय, हार्मोनल बदलावों के कारण चेहरे पर मुहासे निकलना आम बात है, लेकिन सखियो थोड़ी सी देखभाल से इन्हें काफी नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले तो मुहासों को बार बार छूने या दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुहासे ठीक नहीं होंगे बल्कि सूजन बढ़ेगी और दाग भी पड़ सकते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश से चेहरा जरूर धोइए। अक्सर देखा गया है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है या जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, उन्हें ये समस्या ज्यादा होती है। तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और खाने में भी बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाने से बचना चाहिए। हेल्दी डाइट ही लीजिए। सखियो दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है, ताकि शरीर जो है वो हाइड्रेट रहे। सखियो घरेलू उपायों की बात करें तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर 15 से 20 मिनट के लिए मुहासों पर लगा लीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। आप चाहें तो इन पर एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं। शहद और दालचीनी की पाउडर का जो पेस्ट होता है ना, उससे भी आप लगा सकती हैं मुहासों पर। इससे भी मुहासों में बड़ी राहत मिलती है, इससे सूजन भी कम होगी। और सखियो अगर समस्या बहुत ज़्यादा है ना, तो संबंधित डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, इन्हें अनदेखा बिल्कुल ना करें। और साथ ही हम आगे बढ़ते हैं फैमिली फिटनेस में भी। सखियो आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक जंक फूड काफ़ी पसंद किए जाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पैकेट वाले स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स अक्सर घर में या फिर बाहर जाकर खाए ही जाते हैं। कभी कभी खाना तो ठीक है सखियो, लेकिन अगर यही रोजमर्रा की आदत बन जाए तो सेहत पर तो असर होगा ही ना सखियो। सखियो जैसा कि नाम ही है जंक फूड, तो काम भी तो जंक का ही होगा ना। जंक फूड कभी कभी स्वाद के लिए खाया जा सकता है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए घर का पौष्टिक खाना ही हमारी पहली पसंद होना चाहिए। घर में बच्चों के लिए जंक फूड की जगह पर स्वादिष्ट और आसान विकल्प रखिए, जैसे भुना चना, मखाना, फल, दही, पोहा, ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें थोड़े से घी में सेक कर नमक और काली मिर्च मिलाकर रख दीजिए। इससे बच्चों का पेट भी भरेगा और बेहतर पोषण भी मिलेगा। अक्सर क्या होता है ना सखियो, बच्चे जब या तो पढ़ाई करते हैं या खेल कर आते हैं ना, तब उन्हें कुछ खाने का मन करता है, तब ये ड्राई फ्रूट्स उनके लिए बेहतर विकल्प होते हैं। सखियो जंक फूड चाहे बाहर जाकर खाइए या घर पर बनाइए, उनमें ना ज़्यादातर मैदे का इस्तेमाल होता है और ये सेहत को हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जंक फूड को ना कहना है और घर का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन ही बच्चों को देना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे ना सखियो, तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको भी खुशी होगी। आपको खुश कर देते हैं एक और बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत हमने लिया है फिल्म लम्हे से।
1: मेरा सच्चा

का सफर आज बस यही तक। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को। नमस्कार।

सखियां सुन रही थी महिला सभा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए देवी गीत और चाट कौवा और कतवाती।

डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सुनीति महेश्वरी के गाए भजन और गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है।

0: सुनीति महेश्वरी के गाय इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। चलो दीदी झूला झूलते हैं।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, पहला गीत तीसरी कसम तेरी कसम फिल्म से अमित कुमार की आवाज़। आरन बख्शी के गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा, पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर बहस का मौका दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर चर्चा हो रही है। वहीं कल यानी दूसरे दिन समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर बहस और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा,
2: मध्यप्रदेश के अंदर आज 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। देश के युवाओं को लोकतंत्र, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है। जिस प्रकार से आपने शुरुआत की, ये उसकी अच्छी झलक है।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुई। यात्रा में हजारों नागरिकों, युवाओं, खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में नावों की विशेष फॉर्मेशन से तालाब के बीच विशाल फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत दमोह के तहसील ग्राउंड से निकली तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। वहीं मैहर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और आगरमालवा में आयोजित तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लेकर लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के 9 विशिष्ट सेवा पदक और 33 सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 3 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी दिए जाएंगे, जिसमें स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत और राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को पदक मिलेगा। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर और वडोदरा समेत कई शहरों के 500 से ज्यादा उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, जमीन और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए भोपाल में देर रात से आज तड़के तक जांच अभियान चलाया, जिसके तहत डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों से करीब 275 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये बताई गई है। टीम ने पनीर के नमूने जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें दूरसंचार और प्रसारण में शुल्क निर्धारण तथा बिलिंग व्यवस्था विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। धार जिले में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर ग्राम उटावत पीपलखेड़ा के पास बच्चों से भरी स्कूल बस और यात्री बस की भिड़ंत में 16 लोग घायल हो गए। और सतना जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 2 माह का सघन जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ।

0: इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
1: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
2: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
3: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
4: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित

0: अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
1: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे FIR करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3,00,000 रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1,00,000 रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
3: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
4: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है बेटा फिल्म के इस नगमे की, जिसे आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेवा ने, समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए बेटा फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां धामणी मानोरा ज़िला वाशिम से तुलसी राम डेरे मायावती डेरे संदेश डेरे आदेश डेरे किरण डेरे प्रज्वल डेरे और अनुतजीत डेरे नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन आप सब ने सुनना चाहा है बेताब फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ें दी है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने आनंद बख्शी का गीत है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

चंबल की कसम। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, साहिर का गीत और खयाम का संगीत। इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा ने, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी ने, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर का गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव।

जब जब फूल खिले, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर। आगर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी गवाणकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शेब खान, साइमा, मुस्तफ़ा खान, आफिया खान, राव भाई, शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा, जब जब फूल खिले फिल्म से।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य अतिथि में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुईं। इस मौके पर एक फ्लोटिंग तिरंगा भी नावों के माध्यम से बनाया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है और सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर रात 8:30 और रात 9:30। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00 और 6:45 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विश्व अंगदान दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम। 7:30 सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर हरदयाल शर्मा की कृषि वार्ता। विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। संसद समीक्षा 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी और 8:15 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे अली अहमद हुसैन और पार्टी का शहनाई वादन। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ, तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस भीगी भीगी शाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुषा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो श्रोताओं, आज हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको आज के प्रश्न बता देते हैं और उसके बाद करेंगे खूब सारी चर्चा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए साथियों। और फिलहाल बात कर लेते हैं अनुषा कि अभी हाल फिलहाल में देश में क्या चल रहा है।
0: अनुभूति, मुझे तो फिलहाल एक ही बात नजर आ रही है, जल्द ही हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि श्रोताओं तक भी ये बात पहुंच रही होगी कि कैसी धूम नजर आ रही है सड़कों पर भी और उनके घरों में भी।
1: बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस का ये जो पर्व है, ये अभी से ही लोगों के मन में उत्साह जो है हमें दिख रहा है इस पर्व का। और इसी तरह 15 अगस्त का ये जो पर्व हम मना रहे हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छा अभियान देश भर में छिड़ा है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कैसे लोग हमारे भारत की आन बान और शान, तिरंगे को जिस गर्व के साथ, जिस गौरव के साथ अपने घरों में लगा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सिर्फ अपने अपने तरीके से हर कोई व्यक्ति इसे मेरे ख्याल में मना रहा है, क्योंकि तिरंगा अभियान का एक तरफ से उसमें अपना एक योगदान देना ही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोग सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं, और तो और इस बार बाइक रैली भी कई सारी निकल रही नहीं, और कई लोग स्टेज लगा रहे हैं और कई सारे कार्यक्रम, कई सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अनुषा। और तिरंगा यात्रा के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया का भी आज की जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, और हम देख रहे हैं कि कैसे कई तरह की रील्स हम इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और कई लोग हर घर तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट करके अपनी सेल्फी भी पोस्ट कर रहे हैं, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर हम हमारे भारत के इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही सुंदरता के साथ मनाने वाले हैं।
0: बिल्कुल, मतलब एक तरीके से राष्ट्र प्रेम हर तरफ देखने को मिल रहा है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है।

0: अनुभूति, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि नज़ारा कितना खूबसूरत है, इतना कि बस दिल मेरा झूम रहा था। और झूमे भी क्यों ना, आखिरकार सभी का प्रिय पसंदीदा सावन का महीना जो आ गया है। और श्रोताओं, इसीलिए आज का हमारा जो शब्द शीर्षक है वो भी सावन है।
1: बिल्कुल अनुषा, ज्येष्ठ और आषाढ़ की तपती गर्मी के बाद जब आसमान में काले घने बादल छाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने राहत की सांस ली हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई बारिश का इंतजार बड़ी बेसब्री से करता है।
0: बिल्कुल सही कहा अनुभूति तुमने, सावन सिर्फ एक मौसम नहीं होता है, ये एक पूरा एहसास है।
1: और इसी खूबसूरती को शब्दों में पिरोते हुए अनुषा, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि सावन की पहली बारिश में धरती ने ओढ़ी धानी चुनरिया है, झूम उठा है मन मयूर, हर दिल में छाई एक अजब उमंग है, बूंदें जो गिरी आसमान से लगा जैसे शिव की जटा से अमृत बहा है, देखो यारो प्रकृति का ये रूप कितना सुंदर, कितना पावन और नया है।
0: वाह, सचमुच अनुभूति तुमने तो दिल छू लिया। वाकई सावन आते ही हर तरफ हरियाली की चादर बिछ जाती है, खेतों में किसान खुश हो जाते हैं, बागों में पेड़ों पर बड़े बड़े झूले पड़ जाते हैं और सहेलियां इकट्ठा होकर मल्हार और कजरी गीत भी गाती है। लोग घरों से बाहर निकलकर इस रिमझिम फुहार का खूब आनंद भी लेते हैं।
1: ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अनुषा, वो झूलों का क्रेज तो अद्भुत होता है। और सावन की फुहारों के बीच जब वो लोकगीत हवाओं में गूंजते हैं तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। लोग अपने सारे तनाव, अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस इस मौसम को, इन बारिश की बूंदों को जी लेना चाहते हैं और इनको ऐसे जीना चाहते हैं कि इस मिट्टी की महक को अपने भीतर बसा लें।

0: अनुभूति, सावन का ये जो रूप है ये जितना सुंदर और मनमोहक है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई भी उतनी ही है। सावन का महीना यानी पूरी तरह से आस्था, विश्वास और देवों के देव महादेव और माता पार्वती की भक्ति का महीना भी है। चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई देती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने अनुषा, इस महीने में पूरे भारतवर्ष की जो फिजा है वो बदल जाती है। हर सुबह लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनकर हाथों में पूजा की थाली लिए शिवालयों की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें, हवा में कपूर और अगरबत्ती की खुशबू और शिवलिंग पर गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, शहद, दही, घी, बेलपत्र और कई तरह की सामग्रियों से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन में शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं।
0: और इसमें सबसे खास महत्व होता है सावन के सोमवार का। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उनके उस तप का फल इसी सावन के महीने में मिला था जब शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, और इसीलिए यह महीना शिव और शक्ति के अटूट मिलन का प्रतीक है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि आज भी कुंवारी लड़कियां मनचाहा और सुयोग्य वर पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र, अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी ये व्रत पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर मन को शुद्ध करने का भी एक अच्छा विचार है।
0: और मुझे लगता है कि जब भी व्रत की बात आती है तो हमारे भारत में व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है बल्कि सात्विक स्वादों का उत्सव भी होता है। सावन के पूरे महीने में लोग लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं और घर में शुद्ध यानी सात्विक भोजन बनता है। और सोमवार के दिन रसोई से जो खुशबू आती है ना अनुभूति, उसका तो क्या ही कहना है। गर्मा गर्म साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की फूली फूली सी वो पूड़ियाँ, सेंधा नमक वाले जीरा आलू, मखाने की मलाईदार खीर और मीठे में आलू या लौकी का हलवा। व्रत रखने वाले के साथ साथ मुझे लगता है बाकी घर वाले भी इसे खाने का इंतजार करते हैं।
1: बिल्कुल अनुषा, तुमने तो पूरा मेनू ही यहाँ पर सुना दिया और इसी के साथ मुझे भी और हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके भी मुंह में पानी आ गया है। लेकिन सावन सिर्फ सोमवार के व्रत तक नहीं रुकता, ये अपने साथ त्योहारों की एक लंबी झड़ी लेकर आता है। इसी महीने में आती है हरियाली तीज, जहाँ नवविवाहित लड़कियाँ और महिलाएँ हरे रंग के सुंदर परिधान पहनती हैं, हाथों में चूड़ियाँ और कई तरह से इस उत्सव को मनाती हैं। और भारत में कई जगह जैसे राजस्थान में इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
0: और अनुभूति, सावन का समापन तो और भी ज़्यादा खूबसूरती से होता है। सावन महीने के आखिरी दिन यानी सावन की पूर्णिमा को देश भर में भाई बहन के पवित्र और अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। चारों तरफ बाजारों में रंग बिरंगी राखियाँ, मिठाइयों की दुकानों पर घेवर, फिरनी, मालपुए और रसमलाई की महक। सचमुच सावन प्रकृति के सौंदर्य, इंसानी रिश्तों की मिठास और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का एक ऐसा संगम है जो हर दिल को खुशियों से सराबोर कर देता है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों त्योहारों का आनंद उठाइए और रिमझिम बरसाती इन बूंदों का आनंद भी उठाइए। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों, कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते इंसान बनाते हैं। और मुझे लगता है अंगदान ये भी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ कोई अनजान व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत बन जाता है। और आज 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, अंगदान एक ऐसा विषय है जो केवल चिकित्सा से नहीं बल्कि मानवता और जीवन बचाने की भावना से जुड़ा है। अंगदान का अर्थ है मृत्यु के बाद अपने कुछ स्वस्थ अंगों का दान करना ताकि वे किसी जरूरतमंद मरीज के प्रत्यारोपण में काम आ सकें।
0: बिल्कुल, अंगदान को दो प्रकारों में समझा जा सकता है। पहला, जीवित अंगदान। इसमें कोई जीवित व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ऐसा अंग या अंग का हिस्सा दान करता है जिसके बाद दाता भी सामान्य जीवन जी सकता है।
1: उदाहरण के लिए, चिकित्सकीय और कानूनी नियमों के तहत स्वस्थ व्यक्ति एक किडनी का एक हिस्सा दान कर सकता है। इसके लिए दाता की पूरी चिकित्सकीय जांच और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है।
0: और दूसरा प्रकार है मृत्यु के बाद अंगदान, जो आप सब जानते ही है। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसके उपयोगी अंग,

0: जैसे जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्यारोपण के लिए दान किए जा सकते हैं। और उनके अनुसार हृदय, फेफड़े, गुर्दे, अग्नाशय जैसे अंग जो है इन्हें दान किया जा सकता है।
1: यानी अंग दान दो तरह से जीवन को छू सकता है, जीते जी किसी को अपना अंग देकर या जीवन के बाद अपने अंगों से किसी और के जीवन में उम्मीद जगाकर।
0: लेकिन क्या आपने सोचा है अंगदान क्यों जरूरी है? आपको बता दें कि कई गंभीर बीमारियों में अंग प्रत्यारोपण मरीज के जीवन को बचाने में बहुत जरूरी विकल्प बन जाता है।
1: लेकिन जरूरतमंद मरीजों की संख्या और उपलब्ध दाता अंगों के बीच अंतर आज भी एक बड़ी चुनौती है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा दान किए गए अंग एक से अधिक लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं,
0: या फिर कहा जाए तो एक की विदाई दूसरे के जीवन की नई शुरुआत बन सकती है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें ये समझाना है कि मृत्यु के बाद दान किए गए अंग किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन का एक नया अवसर दे सकते हैं।
1: साथ ही ये दिन अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और लोगों को सही एवं प्रमाणित जानकारी देने का अवसर भी देता है। ऐसे में जागरूकता और अधिक लोगों का अंगदान के लिए आगे आना बेहद महत्वपूर्ण है।
0: और खास तौर पर हमारे युवा साथियों, अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के इस दौर में सही जानकारी को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अंगदान को लेकर समाज में कई मिथक और गलत फहमियां मौजूद है,
1: इसीलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय सही और प्रमाणित जानकारी हासिल करना जरूरी है। एक जरूरी बात, अगर कोई व्यक्ति अंगदान का संकल्प लेना चाहता है तो उसे अपने परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी अवश्य देनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि मृत्यु के बाद अंगदान की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए केवल स्वयं संकल्प लेना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी से इस विषय पर खुलकर बातचीत करना भी जरूरी है।
1: अंगदान केवल अंग देना नहीं, ये विश्वास देने का नाम भी है।
0: और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आज हम खुद से ये पूछें कि क्या मेरे जीवन के बाद भी हमारे जीवन का कोई हिस्सा किसी और के काम आ सकता है।
1: जीवन सीमित है लेकिन इंसानियत की कोई सीमा नहीं। हम रहें या ना रहें, किसी और की जिंदगी में उम्मीद बनकर जरूर रह सकते हैं।
0: तो दोस्तों, आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी विरासत है और शायद आपकी एक उदार सोच किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत बन जाए।

0: साथियों, आज की जो तारीख है वो भारतीय सिनेमा के आसमान पर चमकने वाले दो बेहतरीन सितारों के नाम हैं। एक ने शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को पर्दे पर नई पहचान दी तो दूसरी ने अपनी आँखों, भाव भंगिमा और अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी।
1: एक थी वैजयंतीमाला और दूसरी श्रीदेवी, और दोनों का जन्म यानी आज 13 अगस्त को हुआ। दो अलग दौर, दो अलग अभिनय शैलियाँ, लेकिन दोनों में एक समानता, अपने हुनर से दर्शकों के दिलों पर लंबे समय तक राज करना।
0: मद्रास में जन्मी वैजयंती माला एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था।
1: उनका फिल्मी सफर दक्षिण भारतीय सिनेमा से शुरू हुआ और आगे चलकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना एक अलग पहचान बनाई।
0: नागिन, देवदास, नया दौर, आशा, गंगा जमुना, संगम और ज्वेल थीफ जैसी बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह से किरदार निभाए।
1: और खास बात ये थी कि उनके अभिनय में नृत्य केवल एक अतिरिक्त खूबी नहीं था, बल्कि उनके अभिनय का हिस्सा बन जाता था।
0: देवदास में चंद्रमुखी के रूप में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था।
1: दोस्तों, वैजयंतीमाला की खासियत ये थी कि वे नृत्यांगना भी थी, अभिनेत्री भी थी और एक मंच कलाकार भी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय संस्कृति से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: वहीं दूसरी ओर एक ऐसी अभिनेत्री जिनके अभिनय, चुलबुले व्यक्तित्व और नृत्य ने बॉलीवुड को अलग दिशा दी।
1: दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म भी 13 अगस्त को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ।
0: उन्होंने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद वे हिंदी सिनेमा में आई और देखते ही देखते दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गई।
1: हिम्मत वाला, सदमा, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, लम्हे और खुदा गवाह जैसी फिल्मों ने उनके करियर को अलग अलग रंग दिए।
0: साथ ही नए जमाने में भी उन्होंने मॉम, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। श्रीदेवी की सबसे बड़ी खूबी थी कि वे एक ही फिल्म में गंभीरता, हास्य, भावुकता और नाटकीयता के बीच सहजता से आ जा सकती थी, मिस्टर इंडिया की चुलबुली सीमा हो या फिर चांदनी की रोमांटिक नायिका,
1: या फिर चालबाज का डबल रोल हो या सदमा की बेहद संवेदनशील और भावुक भूमिका। श्रीदेवी हर किरदार को अपनी अलग पहचान दे देती थी।
0: उनकी आंखों का अभिनय विशेष रूप से दर्शकों को आकर्षित भी करता था। कई बार बिना संवाद के केवल चेहरे के हाव भाव से वे पूरी कहानी कह देती थी।
1: अगर वैजयंतीमाला ने हिंदी सिनेमा में शास्त्रीय नृत्य और अभिनय का खूबसूरत मेल प्रस्तुत किया तो श्रीदेवी ने अभिनय को एक ऐसी बहुमुखी ऊंचाई दी जहां नायिका हास्य भी कर सकती थी, गंभीर अभिनय भी और चुनौतीपूर्ण चरित्र भी।
0: दोनों ने ये साबित किया कि एक अभिनेत्री केवल कहानी का हिस्सा नहीं होती, वे कहानी को यादगार बनाने वाली शक्ति भी हो सकती है।

0: तो साथियों, अब वक्त हो चला है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बताने का। तो आज का पहला प्रश्न था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, जिसका उत्तर है मौसिनराम, जो मेघालय में है।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, जिसका उत्तर है वेटिकन सिटी।
0: तो दोस्तों, जाते जाते आखिरी गीत सुनते जाइए।

0: तो दोस्तों, ये था आज का युवाणी कार्यक्रम।
1: हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत अनुभूति
0: और अनुषा को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं आशा फिल्म के गीत से, स्वर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों का है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

0: जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी की गीत रचना आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का। फिल्म का नाम है लावा।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी इंदौर है। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
2: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
3: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
2: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
3: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
2: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
3: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
3: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
2: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
2: जी,
3: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
2: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
4: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
5: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
4: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
6: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
7: कौन है?
8: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
7: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई, कहां चले गए थे तुम?
8: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
7: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
8: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
7: ये इस शीशी में क्या है?
8: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
7: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
8: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
7: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
8: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
4: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
6: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
8: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
9: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
8: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
4: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
6: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
2: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: सहेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर।
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर।
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
3: भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो
3: हमला
2: करो। चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों,
5: yes,
4: इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
4: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: करते
4: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा। कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूरवीर।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा।
6: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत इतना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
4: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
3: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब वंदना दुबे के स्वर में सुनिए सुगम संगीत। प्रस्तुत है संत मीराबाई की ये रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से वंदना दुबे के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अब सुनिए सरस्वती कुमार दीपक की ये रचना।

श्रोता वंदना दुबे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोता लोक संगीत में सुनिए सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुत है ये पहली लोक रचना।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, लोक संगीत में आप सुन रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुत है ये अगली लोक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी।

0: लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
1: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किये। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। शाम 7:30 पर श्रोताओं हमारे भोपाल केंद्र से सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर और चित्रगीत होंगे रात 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन पेश होगा रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे का गाया राग बिहाग। श्रोताओं ये थे आज के कार्यक्रम। अब कल के कार्यक्रम भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे रोजाना ही की तरह कल सुबह 6:05 पर। चिंतन होगा कल सुबह 6:30 पर। विषय होगा टूटने का वरदान। आलेख शालिनी शुक्ला का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का। खेती की बातें में सुबह 6:35 पर सोयाबीन में कीट नियंत्रण की जानकारी दी जाएगी। श्री रामचरितमानस।

0: आप सुनेंगे कल सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा कल सुबह 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की होगी। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल हम लेकर आएंगे कल सुबह 7:35 पर। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रताप राव कदम का काव्य पाठ। श्रोताओं, लोक संगीत में कल सुबह 9 सुनेगा सपना सिसोदिया और साथियों के गाए लोकगीत, और कल सुबह 9:15 पर होगा कुंजलता वर्मा के स्वर में सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर सुनिएगा गजानंद वारुड़े का गाया राग अहिर भैरव। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10 हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर। आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे भोपाल केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 20 की खास खबरें होंगी कल सुबह 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर। फिल्म संगीत सुनेगा दिन में 12 और 2 और चित्रपट संगीत के अंतर्गत दिन में 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1 लोक संगीत होगा दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत सुनेगा दोपहर 1:45 पर। आकाशवाणी इंदौर की सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा ठीक शाम 5 युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी के साथ। कल शाम 6 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: August 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 का मौन धारण करें।
0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं सहित विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भोपाल, ओंकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर और बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी भोपाल तिरंगामय होती हुई नजर आ रही है। उसी क्रम में गुरुवार को शहर के ऐतिहासिक बोट क्लब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल इस दौरान राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। युवा खिलाड़ियों ने काइकिंग, केनोइंग और केनो सलालम शो के जरिए शानदार प्रदर्शन करते हुए तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान तालाब के बीच देश में पहली बार फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं नौका सवार होकर देश सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
0: जबकि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। बैतूल, गुना, खंडवा, शहडोल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनसेवा, सुशासन और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय गड़रिया महासभा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में डॉ. यादव ने पाल गड़रिया बोर्ड के गठन की घोषणा भी की।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा।
0: भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान 15 अगस्त को होने वाले समारोह की पूरी प्रक्रिया को तय प्रोटोकॉल के अनुसार दोहराया गया। परेड, मार्च पास्ट और ध्वजारोहण के साथ सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन आज किया गया, जिसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। पहले दिन भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस हुई। वहीं कल समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। रायसेन जिले में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़कर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के साथ प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को अपनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर अच्छे बीज, खाद और पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व अंगदान दिवस के मौके पर कहा कि अंगदान जरूरतमंदों के लिए नई आशा और नया जीवन देने का महान संकल्प है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और

इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए देश प्रेम और धर्म संस्कृति के संरक्षण के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी कल शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 71वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व छात्रों के सहयोग से बने आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरिना का लोकार्पण किया और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने विश्व अंगदान दिवस पर लोगों से अंगदान का संकल्प लेने की भी अपील की। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 18 अगस्त से समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश, जिले और गांव स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जहां जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। 20 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी जिलों में कलश रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। भोपाल में कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर पनीर के नमूने लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक इसे एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। इंदौर में भी करीब 800 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बाद अब मानसून का स्ट्रांग सिस्टम पूर्वी हिस्से में एक्टिव होने जा रहा है। मौसम विभाग ने कल के लिए जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा 15 अगस्त को रविन्द्र भवन में आयोजित आजादी के महापर्व में प्रख्यात गायिका कविता कृष्णमूर्ति देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगी। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन एचआईवी जागरूकता अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। शहडोल में स्थानीय उद्यमियों और समूहों के लिए लघु उद्योग भारती के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनूपपुर में स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजाति बाहुल्य गांवों में आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्योपुर में 14 अगस्त को विकासखंड कराहल के ग्राम बरगवां में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आगरमालवा में श्रावण माह के उपलक्ष्य में विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में पुरानी कृषि उपज मंडी से 51,000 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा की शुरुआत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता सभी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम खेती गृहस्थी में। मैं हूं आपका मित्र मयंक शर्मा। किसान भाइयों, मानसून का आगमन हो चुका है कि या ये कहें कि मानसून का दौर चल रहा है और खेतों में चारों ओर रौनक और हरियाली छाई है। वर्षा ऋतु हमारी फसलों के लिए किसी अमृत से कम नहीं, लेकिन इसी मौसम में अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि इस बरसाती मौसम में हम अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें ताकि हमें बेहतर और अच्छी पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है उचित जल निकासी, यानी खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था। हम जानते हैं कि धान जैसी फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में लगने वाली मक्का, सोयाबीन, दलहन और तिलहन जैसी फसलों के खेतों में अगर 24 से 48 घंटे से ज़्यादा समय तक पानी रुका रहे तो पौधों की जड़ें सड़ने लगती है, फसल पीली पड़ जाती है और विकास रुक जाता है। इसलिए अपने खेतों का नियमित निरीक्षण करें और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित नालियाँ जरूर बनाएं। याद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा जल जमाव आपकी फसल के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती जो इस मौसम में सामने आती है वो है खरपतवार नियंत्रण। बारिश के दिनों में फसलों से ज़्यादा तेज़ी से खरपतवार बढ़ते हैं। ये जमीन से मुख्य फसल का सारा पोषण, पानी और धूप छीन लेते हैं। इसलिए बुआई या रोपाई से के 20 से 25 दिनों के भीतर पहली निराई गुड़ाई का काम हर हाल में पूरा कर लें, या आप सभी ने पूरा कर लिया होगा। अगर आप रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हैं तो मौसम का मिजाज देखकर ही छिड़काव करें। किसान भाइयों, हवा में अत्यधिक नमी और उमस के कारण इस मौसम में कीटों और फंगस यानी फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कीट इस समय फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी फसलों की पत्तियों और तनों को रोज़ाना ध्यान से देखें। यदि पत्तियों पर किसी भी तरह के धब्बे, झुलसा या कीड़े दिखाई दें तो तुरंत नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही कीटनाशक या कवकनाशी का छिड़काव करें। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वे जैविक कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, इस मौसम में यूरिया या अन्य खादों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। तेज बारिश की संभावना होने पर खेतों में खाद बिल्कुल न डालें, क्योंकि वह पानी के साथ बह जाएगी और आपकी लागत बेकार हो जाएगी। जब हल्की धूप खिली हो या मिट्टी में सिर्फ हल्की नमी हो तभी खादों का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, अगर आप इन छोटी छोटी मगर बेहद ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे खेतों में जल निकासी, समय पर निराई गुड़ाई, संतुलित खाद और सही समय पर रोग प्रबंधन, तो आपकी फसलें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात में बस इतना ही। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: संदेश के बाद किसान भाइयों, आइए सुनते हैं मानसी भोंदिया और मंडली का गाया ये मालवी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती गृहस्थी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भैया बहनों को आरती जी की राम राम पहुंचे। भैया जी देखो, कृषि को कार्य ऐसो है जी में कोनो एक के करे से नहीं होत, बल्कि महिला पुरुष दोई को मिलके करने होते हैं, तवही कृषि को कार्य पूरो होते है। तवही तो कहो गो है कि कृषि में महिलाओं की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 73 से 80% महिलाएं कृषि और उसे जुड़े कार्यों में लगी भई हैं। हम महिलाओं के प्रमुख कार्य खेतन में बीज की बुआई, धान की रुवाई, निराई गुड़ाई, इसके अलावा फसलों की कटाई, अनाज की सफाई, भंडारण को प्रबंधन जैसे विशेष कार्य जो हैं हमारी महिलाओं के द्वारा ही करे जाते हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था होवे और चाहे दूध निकालवे को काम होवे या मुर्गी पालन या मछली पालन, ये सभी हमारी महिलाओं के द्वारा ही करे जाते हैं। पर इनको करवे के समय उन्हें बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जैसे मालिकाना हक की बात कह लेवे तो महिलाओं के पास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम 8% ही होते है। दूसरे पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कार्यों में 25 से 35% लो कम मजदूरी मिलत है। भूमि को कानूनी हक न होवे से कई बेर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य आधिकारिक ऋण योजनाओं को सीधो लाभ भी नहीं मिल पाऊत। हम महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावे के लिए कृषि सखी जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसे ग्रामीण महिलाओं को कृषि विशेषज्ञ के रूप में तैयार करो जा रहा है। भैया जी, ई टाइम में मानसून को मौसम चल रहा है, इस समय फल फूलों के पेड़ पौधा के संगे साग भाजी की रुपाई कर देवे तो न केवल उसे हमारी प्रकृति और आसपास को वातावरण हरो भरो बनो रहते, बल्कि फल फूल सब्जी की फसल लेके हम आर्थिक लाभ सोई ले सकते हैं। मानसून मौसम में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य कौन से करे जाते हैं जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी से। उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, वर्षा काल चल रहा है, बारिश का मौसम है और इस बरसात के मौसम में हम अनाज वाली धान्य फसलें ये सब तो लगाते हैं, लेकिन जो किसान भाई उद्यान की फसलों से जुड़े हुए हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, फल फूल उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि RNTU भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और बात हम करेंगे वर्षा काल में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य। चौरसिया जी, उद्यान की फसलों से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी?
4: किसान भाइयों, जैसे हम जानते हैं बरसात का मौसम है, कभी बारिश ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है, पर इस समय जो फसलें लगी हैं यदि पानी अधिक बरसता है तो उसमें जल निकासी की व्यवस्था करना है पहला तो, ताकि उसकी जड़ें ना गलें। और जो किसान भाई फल वृक्ष तैयार करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है, इस समय बडिंग ग्राफ्टिंग करके नए पौधों को तैयार कर सकते हैं, ताकि उनको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर रहेंगे और कम लागत में पौधे भी तैयार हो जाएंगे उनके। तो फल पौधों को तैयार करने का ये सबसे अच्छा सीजन यही है, क्योंकि इस समय वातावरण में आर्द्रता होती है तो उस समय उनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। यदि यही हम किसी दूसरे मौसम में करेंगे तो सक्सेस रेट कम मिलेगा। बरसात के मौसम में हम जो भी बडिंग ग्राफ्टिंग का काम करते हैं, एयर लेयरिंग का, गूटी बांधने का काम करते हैं, तो फल वृक्षों में सफलता अच्छी मिलती है।
3: जी, बूटी बांधने का काम जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से ग्राफ्टिंग हो सकती है, हम थोड़ा सा फलों पर ही चलते हैं। फलों के जो बाग हैं इस समय, फलों के बागों में देखा जाए तो पानी की देने की समस्या तो होती नहीं है, यहाँ कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, तनों पर भी होता है, फल हैं तो उन पर भी होता है। खासकर अमरूद की अगर बात करें तो अमरूद में तो बारिश में बहुत ज्यादा फल खराब होते हैं, क्या किया जाना चाहिए?
4: इसमें हम कहते हैं कि साफ सफाई खेत की रखना चाहिए, जैसे बारिश होने के पहले खेत में अच्छे से रोटावेटर कल्टीवेटर चला के खेत को साफ रखें।
3: जी,
4: फिर ग्रीस बैंड होते हैं प्लास्टिक के, उनमें ग्रीस लगा के तने के चारों तरफ चिपकाएं, तो जो कीड़े जमीन से उठ के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, तने को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उससे बचाव हो जाता है। और अमरूद में एक समस्या आती है फल मक्खी की, वो क्या होता है जब फूल आता है फूल में अंडे दे देती है, और फूल से जब

0: फल बनता है तो उसके अंदर ही वो इल्ली बड़ी हो के फल को खराब कर देती है। कोई भी दवा से हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन बाजार में कुछ फेरोमोन ट्रैप आ गए हैं। यदि फ्लावरिंग अवस्था से लेकर फ्रूटिंग अवस्था के बीच में हम वो फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो उसको नुकसान पहुंचाने वाली मक्खी फंस जाएगी, और बिना रसायनों के प्रयोग से हम बरसात के मौसम में भी अच्छे अमरूद के फल ले सकते हैं।
1: अब जैसे कि इस समय अमरूद में कीड़े लग ही चुके हैं, उन्हें तो बचाया जा नहीं सकता, लेकिन आगे जो फल आने वाले हैं उनको बचाने के लिए अभी से कोई सावधानी बरती जा सकती है क्या?
0: हाँ, जैसे अभी बरसात की फसल तो कम किसान भाई लेते हैं, ज्यादातर अमरूद की फसल किसान भाई लेते हैं ठंड के मौसम में, तो उस समय सितंबर के महीने में जो नाइट्रोजन उर्वरक है उसकी दूसरी खाद की मात्रा दें
1: जी,
0: और साथ में उस समय फेरोमोन ट्रैप लगा दें तो उसमें जब फ्लावरिंग आएगी, अभी बरसात अमरूद में क्या होता है, तीन बहारें आती हैं।
1: बिल्कुल,
0: अमरूद की फसल में फूल बरसात में आते हैं तो फल बनता ठंड में, तो इस समय जो फ्लावरिंग है उस समय हम बचा लेंगे तो आगे आने वाले फल में हमारी जो इल्ली लगने वाली है उससे हम बच जाएंगे।
1: और फलों में नए पौधे भी बाग के लगाए गए हैं, तो जो नए पौधे अभी लगे हैं उनके लिए क्या खाद उर्वरक का प्रबंधन रखना चाहिए?
0: जैसे हम जानते हैं कि मिट्टी की जांच करा लें खेत की, चाहे वो फल सब्जी लगा रहे हैं, धान्य फसलें लगा रहे हैं, मिट्टी की जांच कराने के पता चल जाएगा जिस पोषक तत्व की कमी है उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और हम बिना जांच के लिए डालेंगे तो पता चला जो तत्व हमारी मिट्टी में ज्यादा भी है फिर भी हम उसकी मात्रा ज्यादा डाले जा रहे हैं, किसानों भाइयों की लागत ही बढ़ती है। और ज्यादा नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें क्या पौधों में रस बनता है तो उसको चूसने के लिए रस चूसक कीट आते हैं, तो उन संतुलित प्रबंधन करें यदि उर्वरकों का तो हमारा पौधा मजबूत बना रहेगा, उसमें रस चूसक कीड़ों का आक्रमण भी नहीं होगा और किसान भाई कम लागत में अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बोर्डो पेस्ट लगाने का तरीका क्या है फिर?
0: हाँ, बोर्डो पेस्ट कहते हैं बारिश के मौसम में जब खत्म हो जाता है सितंबर के महीने में
1: जी,
0: तो तने में चूने में नीलत होता मिला के तैयार किया जाता है और तने में लगा देते हैं, जो फफूंद जनित बीमारियां लगने वाली होती हैं पौधे में उससे बहुत नियंत्रण होता है,
1: नियंत्रण हो जाता है
0: जी।
1: हम अब बागवानी में चलते हैं सब्जियों की तरफ
0: जी।
1: सब्जी जो लगाते हैं किसान भाई, इस समय बहुत ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है उनकी पत्तियों पर
0: जी,
1: तो क्या उपाय है उसका?
0: किसान भाई को बरसात के मौसम में जो भी फसल लगाना है वो उठी हुई बेड पे लगाना है ताकि पानी की निकासी हो जाए जब ज्यादा हो जाए। और हम इस समय देखते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां ज्यादा लगाते हैं किसान भाई
1: जी,
0: तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की इस समय उनको बांधने का भी काम करना चाहिए, बधान जो होती है गर्मी के मौसम में हम नहीं बांधते क्योंकि लू चलती है, लेकिन बरसात के मौसम में जो फसल लगाते हैं उसमें बांस बल्ली से बांध के तार से रस्सी से सहारा दिया जाता है, जमीन के जितना टच में नहीं आएगा फल उसमें उतने कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा, हवा में लटके लटके हवा भी अच्छी मिलेगी उसको, वो बढ़वार अच्छी होगी।
1: लेकिन फल सड़न तो यहाँ भी होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी?
0: हाँ, तो वो कुछ फफूंद जनित कारणों से होता है, फफूंद के कारण, और कुछ कीड़े खा लेते हैं इसके कारण भी खराब हो जाते हैं।
1: तो उसका उपचार क्या होगा?
0: यदि जो किसान भाई जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, घनजीवामृत है और जो अपने दशपर्णी अर्क है जो जैविक का प्रयोग करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और रासायनिक का जो प्रयोग करते हैं तो फफूंद नाशक कीटनाशक का छिड़काव समय समय पर कर सकते हैं
1: जी। जी सर, नींबू वर्गीय फसलों की अगर हम बात करें तो इस समय नींबू वर्गीय फसलों में स्ट्रेंग कैंकर रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है
0: जी,
1: और नींबू उत्पादक किसान इसको लेकर परेशान भी होते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए?
0: ये सिट्रस कैंकर से एक जीवाणुजनित बीमारी है और ये पौधों में तब होती है जब पौधे में कापर की कमी होती है, तांबे की कमी होती है, तो हमें कापर युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए एक तो मिट्टी में, तो पौधों में कापर की यदि कमी नहीं होगी तो वो जीवाणु से लड़ने की क्षमता उसमें वैसे बढ़ जाएगी, और यदि मान लीजिए लग गया है सिट्रस कैंकर तो फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एक दवा आती है जीवाणुनाशी, उसका प्रयोग करना चाहिए छिड़काव करने में, कॉप्रोक्सीक्लोराइड के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला के छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है।
1: इसका डोज क्या रहेगा?
0: उसका एक कैप्सूल आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, 6 ml का रहता है, तो वो अपने 15 लीटर पानी के लिए काम आता है, और कॉप्रोक्सीक्लोराइड को हम कहते हैं 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिला के दोनों को मिला के छिड़काव कर देंगे तो कॉप्रोक्सीक्लोराइड फफूंद जनित बीमारी को रोकेगा और स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु जनित बीमारी को रोकेगा, तो दोनों तरह से नियंत्रण हो जाता है।
1: अच्छा, नींबू की फसल में एक समस्या और हो जाती है, अनार है, नींबू है, इनमें फल बनते हैं बढ़ते हैं या तो वे झड़ जाएंगे बहुत छोटी अवस्था में, दूसरी समस्या अगर फल बढ़ गए तो वे फट जाते हैं, दोनों को कैसे संभालें?
0: जो आपने पहली समस्या बताई कि फल झड़ जाना, वो क्या होता है कि किसान भाई हम देखते हैं एनपीके का प्रयोग तो ज्यादा करते हैं पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कम करते हैं। अच्छा। यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो फल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। और जो आपने समस्या बताई फल फटने की, वो क्या होता है कि जैसे पानी का गैप हो जाता है जब
1: जी,
0: काफी समय तक हमने फसल में पानी नहीं दिया और एकदम से पानी दे दिया तो वो उसका सेल से फट के बाहर आ जाता है, तो इसलिए भी समस्या आती है। और कई बार फसल में कीड़ों के प्रकोप के कारण भी फटने की समस्या आती है। तो सबसे पहले तो नमी का प्रबंधन अच्छा करें, हम समय समय में पानी देते रहे, जैसे जो किसान भाई ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो पानी उसमें रेगुलर मिलता रहता है, और जो किसान भाई फ्लड सिंचाई करते हैं उनके यहाँ समस्या ज्यादा आती है।
1: अच्छा, ये कहा जाता है कि बोरान की जो असंतुलन है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो कितनी बात सही है?
0: नहीं, बिल्कुल सही है। जो फलों का जो कटना होता है वो बोरान तत्व की कमी से होता है ज्यादातर। एक तो अपन ने बात की नमी का अपन ने प्रबंध नहीं किया तो हो जाएगा, बहुत दिन से सूखा था फिर एकदम से पानी दे दिया, फसल ने ज्यादा पानी ले लिया तो फट गया। दूसरा, जो बोरोन की कमी होती है उसके कारण ही फल फटते हैं। तो बाजार में बोरेक्स एक मिलता है उत्पाद, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या बोरोन वाली घुलनशील खाद आती है उसको भी मिला के छिड़काव कर सकते हैं।
1: अभी हमारे बहुत सारे किसान भाई जो पत्र लिखते हैं और बात करते हैं कि इस समय अदरक की खेती किसान मध्य प्रदेश में बहुत आयात में करने लगे हैं। अदरक में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पत्तियों में सूखापन आने लगता है, ऊपर से नोक से सूखने लगती हैं पत्तियां, नीचे गलन शुरू हो जाता है
0: जी,
1: कई जगह ऐसी समस्या आ रही है, क्या किया जाए?
0: इसमें अदरक में हम देखते हैं फफूंद जनित रोगों की समस्या ज्यादा आती है। जब अदरक का नया नया हम रोपाई करते हैं तो ऊपर पुआल से ढक देते हैं उसको, ताकि जब अंकुरण आए तो अंकुरण कुछ समस्या ना आए, और अंकुरण आने के बाद वो पुआल हटा लिया जाता है, ऊंची हुई उठी हुई बेड पे लगाएं, और अच्छी उन्नत प्रजाति का, आज के समय में कई प्रजातियां आ गई जो कई रोग बीमारियों से प्रतिरोधी हैं, उनका चयन करेंगे तो किसान भाई कई समस्याओं को प्राथमिक रूप से ही हल कर सकते हैं
1: लेकिन अदरक में लीफ ब्लाइट की जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे?
0: ये फफूंद जनित बीमारी है
1: जी,
0: तो कोई भी उचित फफूंदनाशी लेके उसका छिड़काव करेंगे तो समस्या से निदान पा सकते हैं।
1: मिर्च की फसल में भी हम बात कर लेते हैं, मिर्च की फसल में भी सर कुकड़ा रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है, पर्ण कुंचन जिसे कह सकते हैं,
0: जी जी,
1: पूरी मिर्च सिकुड़ जाती है और किसान बहुत परेशान है, शिमला मिर्च की बात हो या आपकी लंबी मिर्च की बात हो, इससे निजात पाने के लिए क्या तरीका है?
0: ये जो कुकड़ा रोग फैलता है वो एक कीट के कारण फैलता है, मिर्च में थ्रिप्स का अटैक होता है
1: जी,
0: थ्रिप्स उसमें रोग फैलाता है, और टमाटर में हम देखते हैं कि सफेद मक्खी होती है, सफेद मक्खी जब आक्रमण करती है तब उसमें वायरस रोग फैलता है, तो कीट का प्रबंधन करना पड़ेगा तो ये रोग भी नहीं लगेगा समय पे। जैसे आज के समय बाजार में नीले पीले कार्ड मिलते हैं चिपचिपे, या तो उनको लेके लगा सकते हैं, या किसान भाई घर में यदि कनस्तर है उस पर पहले प्राइमर पोत दें फिर पीला नीला बार्निश पोत के खेत में लगा लें ग्रीस के साथ में, तो ये जो रस चूसक कीटे आके उस पर चिपक जाएंगे और किसान भाइयों की फसल में ये जो आपने बताया कुड़कुड़ा रोग नहीं लगेगा और दवाइयों पर उनकी निर्भरता भी नहीं रहेगी।
1: ओके, भिंडी में भी चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि भिंडी की फसल ऐसी है 12 महीने उगाई जाती है, भिंडी की फसल में माहू का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है, और भिंडी में जब माहू आती है तो वाकई भिंडी को बहुत नुकसान होता है, पूरी फसल में उसका प्रकोप होता है, एक सटीक नियंत्रण अगर भिंडी की माहू की बात की जाए तो।
0: हाँ, माहू के लिए भी जो हमने आपको बताया था पीला कार्ड यदि अपन लगाते हैं तो पीले कार्ड में माहू की कीट चिपक जाते हैं तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। साथ में रोगोर नाम का एक केमिकल आता है, डाइमेथोड जो होता है वो सस्ता केमिकल होता है, उसका छिड़काव करें तो माहू का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
1: ओके, और ऐसा कोई विषय अभी जो छूट गया हो सब्जी में फल में या उद्यानिकी से जुड़ा हुआ जिसे किस समय किसान भाई ध्यान रखें?
0: जैसे किसान भाई आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में सारी सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, तो किसान भाई इस समय धान की फसल ज्यादा लगाते हैं, हम कुछ किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आधा एकड़ एक एकड़ में वो उद्यानिकी फसलों का भी समावेश करें, तो घर में खाने के लिए भी उनको सब्जी हो, वो कुछ बाजार में बेचेंगे तो बाजार में सब्जियों की उपलब्धता अधिक होगी तो आम उपभोक्ताओं को भी सब्जी सही रेट पे मिल पाएगी
1: और किसानों को लाभ भी होगा,
0: किसानों को लाभ भी होगा।
1: सर चलते चलते एक और सवाल मेरे मन में है कि किसान कहते हैं ना कि नगदी फसल लगाने में ज्यादा विश्वास करता है, किसान को रोज खर्च करना है, रोज पैसा कमाना है, ऐसी कौन सी फसल है जिसको कि वे लगा करके रोज पैसा कमा सकते हैं?
0: हाँ, जैसे आपने भी बात की थी भिंडी की फसल है, गिलकी की फसल है, ये कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देती हैं, बस इनका समसामयिक प्रबंधन अच्छे से कर लें, हर दूसरे दिन में भिंडी टूटेगी, हर दूसरे दिन में आपकी गिलकी टूटेगी, इनको तोड़ के बाजार में आप विक्रय करें, अच्छे रेट मिलेंगे, कुछ घर में भी उपयोग कर सकते हैं अपने। गिलकी भिंडी तो ये हो गई खुले खेत की, अब जो किसान संरक्षित खेती करते हैं तो उसमें शिमला मिर्च लगा सकते हैं, ठंड के मौसम में ब्रोकली लगा सकते हैं, अभी बरसात के मौसम में स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं।
1: अच्छा, फूलों की खेती को लेकर आपकी क्या विचार है, इस पर हमने अभी तक बात नहीं की।
0: हाँ, फूल हमारे तीन

0: सीजन के अलग अलग होते हैं, वर्षाकालीन अलग होते हैं, बसंतकालीन अलग होते हैं, और ये ग्रीष्म ऋतु के फूल अलग आते हैं। तो सीजन के हिसाब से फूलों का चुनाव कर सकते हैं। साथ में बरसात में यदि हम देखें तो गेंदा है आपका, क्राइसेंथेमम है, गुलदाउदी है, ग्लेडियोलस है, इनका प्रयोग कर सकते हैं लगाने में किसान भाई।
1: धन्यवाद लवेश कुमार चौरसिया जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे किसानों को जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान इन सारी बातचीत को सुनकर उन पर अमल करेंगे और लाभ लेंगे। बहुत बहुत आभार आपका।
0: धन्यवाद।
2: अबे हम सुन रहे हते मानसून के मौसम में उद्यान की फसलों में सम समय कार जा जानकारी लेके हमारे भैया हरे जरूर लाभान्वित हुई है। जिस जी सावन को मौसम चल रहो है तो सुन लेते हैं लीला जोशी के स्वर में जो कजरी लोकगीत।

0: खरीफ मौसम में समसामयिक कार्य।
1: किसान भाइयों, ये समय है हमारी फसलों को मुख्य रूप से कीड़े और बीमारियों से बचाने का। कुछ फसलें अगर देर से बोई गई हैं तो उनमें कुछ खरपतवार नियंत्रण करने का भी, और यदि कहीं फसलों में कमजोरी दिख रही है या पीलापन दिख रहा है तो उसमें पोषण की व्यवस्था करने का। हमारे प्रदेश की मुख्य फसल अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अभी कहीं कहीं शाखा और फूल निकलने की स्थिति है, और इसमें मुख्य रूप से जो कीट नुकसान कर रहे हैं वो हैं अलग अलग कलर की रंगों की इल्लियां। ये इल्लियां जो पौधे के नुकसान पहुंचाती हैं, पत्तियों को खाती हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं कीट जो तने को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें घुस के, जैसे जैसे रिंग कटर कहते हैं हमारे किसान भाई, और गर्डर ब्यूटल जिसका नाम है। तो इल्लियों के लिए नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि पहले तो खेत का निरीक्षण कर लें और ये देख लें कि करीब 1 मीटर की लंबाई कतार की हो उसमें करीब 2-3 इल्लियां अगर दिख रही हैं तो फिर हमें नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करना आवश्यक है अपनी फसल को बचाने के लिए। तो ये इन इल्लियों में मुख्य रूप से हरे भूरे कलर की और कई रंगों की होती हैं इल्लियां। एक सेमी लूपर नाम की भी इल्ली होती है जो कुबड़ निकाल कर चलती है, इसको किसान भाई पहचानते हैं। तो ये सभी इल्लियां बहुत नुकसान करती हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए मिश्रित कीटनाशक बहुत प्रभावी हैं। उनमें एक बीटा साइहेलोथ्रिन और एमिडा क्लोप्रिड, इनके मिश्रण से एक ये बना है और इसको 350 मिलीलीटर दवा आवश्यक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब ये कीटनाशक अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरा थायमेथॉक्सम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन, ये करीब 125 मिलीलीटर दवा इसकी उपयोगी होगी। और इसके अलावा भी एमामेक्टिन बेंजोएट, ये 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव दवाइयों का करना है। इसमें दवा छिड़कते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूरे खेत में छिड़काव हो, इसके साथ साथ मेड़ों पर भी इसका छिड़काव हो, जिससे जो कीट मेड़ों पर रह जाते हैं वो वापस खेत में ना आ सकें, वहां भी छिड़काव अवश्य करें। गर्डल बीटल के नियंत्रण के लिए लैम्डा साइहेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर या पूर्व से जो उपयोग करते रहे हैं ट्राइजोफॉस 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी समय रोग भी आते हैं सोयाबीन में भी अन्य फसलों में भी, तो मुख्य रूप से जो पीला मोजेक रोग है जिसमें पीली पत्तियां पड़ती हैं पौधों की, वो बहुत सामान्य रूप से फैलता है। इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये रोग सफेद मक्खी जो बहुत छोटी मच्छर जैसी होती है उससे फैलता है, और ये पत्तियों का रस चूस के दूसरी जगह जाते हैं और पूरे खेत में इसको फैलाते हैं वायरस को, और बहुत तेजी से पीलापन आता है। इसमें किसान भाई ध्यान रखें और बहुत तरीके से पूरा निरीक्षण हो, समय पर रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें, मिट्टी में गाड़ें, इधर उधर ना फेंकें। और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायमेथॉक्सम नाम का कीटनाशक का उपयोग करें, ये 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इससे जब ये नियंत्रित हो जाएगा तो पीला मोजेक रोग भी नियंत्रित रहेगा। धब्बे वाली कुछ बीमारियां भी सोयाबीन में होती हैं, उसमें फफूंद नाशक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, और टेबुकोनाजोल 10 ग्राम और उसमें सल्फर मिलाकर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी किसान भाई ध्यान रखें, अगर आवश्यक है तो 15-20 दिन की यदि फसल है तो एमाजाथा फायर 75 ग्राम या कुजुलफा पिथाइल का छिड़काव कर सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे हते खरीफ फसलों में समसामयिक जानकारी डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी से। जी, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ई योजना को उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भई हमारी ग्रामीण महिलाओं को वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ा के 1 लाख रुपए या उसे अधिक करवे को है। ई के साथ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता सोई दी जा रही है। ई योजना के बहुत सारे लाभ हैं। ई योजना से स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को जोड़ा जाता है। महिलाओं को वर्ष भर में 1 लाख रुपए कमावे योग्य बनाओ जात है। स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करवे के लाजे आसान व कम ब्याज दरों पे ऋण की सहायता मिलत है। महिलाओं को

0: कृषि, डेयरी, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे कार्यों को प्रशिक्षण सुई दिलाओ जात है। ई के लाजे पात्रता की कछु शर्तें हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच भव चाहिए। महिला को कोनऊ स्वयं सहायता समूह से जुड़ो भव चाहिए। लखपति दीदी योजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलते हैं, जिसे वे अपने परिवार और समाज की आर्थिक प्रगति में योगदान देती हैं। भैया जी, अबे आप सुन रहे हते किसान वाणी कार्यक्रम। अब समय हो रहा है सो आरती बहन को देव आज्ञा। राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
1: किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंदना द्रुमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडीके सदस्य एलके सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुख सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परम्पराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा

0: संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे निजी पूंजी जुटाने और विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स सहयोग, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार
3: त्रिपाठी जी। जैसा हमें पता है कि अभी ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स हैं, उनकी मीटिंग जयपुर में हुई जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। खास तौर से जो हम वित्त विकास की जब हम बात करते हैं और विकास के लिए जो पूंजी के मोबिलाइजेशन को या पूंजी को जुटाने की बात करते हैं, और इसमें ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में ब्रिक्स के देशों के बीच में किस तरह का तालमेल, कैसा सहयोग हो सकता है, इस बारे में विशद चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पूरा विषय क्या है। जब हम विकास के लिए वित्त जुटाने की बात करते हैं और पूंजी की हमें जरूरत होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पूरा विषय, पूरा संदर्भ क्या है, आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ब्रिक्स प्लस में जितने भी देश हैं सभी विकासशील देश की श्रेणी में है, और इन देशों में विकास के लिए तरह तरह की परियोजनाएं, सड़क परियोजना, जलमार्ग परियोजना, एयरपोर्ट के तटीय परियोजनाएं, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन सब की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी जरूरत होती है। और इस परियोजना के लिए, हर काम के लिए जैसे पूंजी की जरूरत होती है, वैसे ही इन परियोजनाओं के लिए जरूरत होती है। अब ये पूंजी कहाँ से जुटाई जाए, इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो देश की सरकार के पास जो इनकम टैक्स से, जो कस्टम से, कलेक्शन से जो रेवेन्यू आती है, उससे खर्चा किया जाए। दूसरा खर्चा किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के किया जाए। और तीसरा है कि प्राइवेट पार्टी से वित्त पोषण कराया जाए, चाहे वो पूरी तरह प्राइवेट हो, चाहे वो पीपीपी में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। अब देखिए, जो धनी सरकारें हैं या जो बड़ी सेंट्रलाइज सरकारें हैं, जैसे चीन की हुई या रूस की या कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार है, वो तो सरकार जो है वो पैसे पर बैठी रहती है, उसको जितना चाहे, जिस हिसाब से चाहे खर्च करती है, अपने नागरिकों की भले ही भलाई ना हो उसमें डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो खर्च करती है, उसको तो दरकिनार करके भी उनकी बेसिक जरूरतों जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सबको दरकिनार करते हुए भी करीब करीब। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनके सामने सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं होती, बल्कि कई और चीजें होती। एक तो सरकार का खर्चा
3: जी,
4: दूसरा उनके जो संस्थान है, उनकी संसद है, उनके
3: विधानसभाएं
4: हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनकी जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनके रेलवे वगैरह चल रही, उनके लोगों की तनख्वाहें वगैरह। तो विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं होता सरकारों के पास कि वो स्वयं इसमें सारा कुछ कर सके, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका बजट हमेशा घाटे का बजट होता
3: जी।
4: अब अगर उनके पास ये पैसा नहीं है तो वो या तो कुछ हद तक विश्व की संस्थाओं से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जुटाएंगे, या कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जुटाएंगे
3: जी।
4: हमारे यहाँ अभी तक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल पहले तक तो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। प्राइवेट जो है वो ये माना जाता था कि प्राइवेट बिजनेस है वो सिर्फ अपने भलाई के लिए काम करेगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि बिजनेसमैन भले ही अपना प्रॉफिट ले, अपना लाभ हो, लेकिन अगर वो एक प्रोजेक्ट करता है तो उससे टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उससे और भी तरह के फायदे होते हैं। अगर वो सड़क बनाता है तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं है, सड़क बनाता है या सड़क है, बस चलाता है समझिए, तो बस चलाने वाला जो है वो सिर्फ बस से किराया वसूल करेगा, उसका फायदा तो होगा, लेकिन उससे की मोबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों में, लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ये एक दूसरा फायदा होता है। तो अब इस चीज को समझा गया है
3: जी। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया बाद में ऐसा होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, उसके बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की और तमाम जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी खुली, तो ये जो निजी पूंजी का प्रवाह उसके साथ ही बढ़ा। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी देना चाहें, और साथ ही जो ये निजी पूंजी जब आती है या जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाते हैं, तो सरकार और निजी पूंजीपति के बीच में जो विकास के लिए सहयोग है उसके क्या मुख्य ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं?
4: जो भी ऐसी विकास परियोजनाएं हो रही हैं उसका एक पहले प्रारूप, एक खाका होता है कि ये सड़क ऐसे बनेगी या ये पोर्ट ऐसे डेवलप होगा या रेलवे ट्रैक ऐसे डेवलप होगा या ये स्टेशन ऐसे डेवलप होगा या बिजली घर ऐसा डेवलप होगा। तो जो वो डेवलपमेंट होता है तो एक तो ये परियोजना का होता है कि जितना काम कहा गया है उतना होना चाहिए, उतने समय में होना चाहिए और उतनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, ये पैरामीटर। इसके साथ ही ये भी पैरामीटर है कि अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो काम में गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वर्कर्स जो हैं उनके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये भी है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब्रॉड नहीं होनी चाहिए इतनी। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो ठीक है, आप उसका पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे का सारा पैसा वहां ले जाएं और यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना हो। ये भी इसमें ये पैरामीटर में होता है कि आपकी जितनी अर्निंग होगी, जितनी आपकी आय होगी, उसका इतना प्रतिशत आपको यहीं पे फिर से निवेश करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके अंतर्गत सरकारें और व्यक्तिगत या कॉरपोरेट समझौता करते हैं
3: जी। और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स के अभी मीटिंग हुई, जो बैठक हुई उसके संदर्भ में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जो निजी क्षेत्र है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ही निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके विकास की परियोजनाओं में भागीदारी करेगा, या जो ब्रिक्स के और देश हैं वहाँ के जो निजी पूंजी वाली संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ भी आपस में किसी सहयोग की बात है?
4: हाँ, देखिए मेरे ख्याल से

0: सहयोग द्विपक्षीय होगा, सिर्फ एक देश के लोगों के बीच में नहीं होगा, पूरे ग्रुप के बीच में होना चाहिए कि ना सिर्फ भारत में सरकार और प्राइवेट निवेशक सहयोग करेंगे या ना सिर्फ भारत में सरकार और बाहर के प्राइवेट निवेशक करेंगे, बल्कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक ब्रिक्स के समूह के एक दूसरे देशों में भी निवेश करेंगे।
1: जी, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रस्ताव है कि ब्रिक्स के देश आपस में मिलकर कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित करें जिससे कि जिस भी देश को विकास के लिए धन की जरूरत है तो उस बैंक से उसको मुहैया कराया जा सके?
0: देखिए, 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जिसका अभी 100 अरब डॉलर के करीब उसका कोष है, और उसकी स्थापना इसीलिए हुई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि वो डेवलपमेंट या विकास की बातों में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ 100 अरब डॉलर की, उससे ये परियोजनाएं ब्रिक्स के देशों में, एक देश में एक देश द्वारा दूसरे देश में की जाने वाली या ब्रिक्स के देशों में से किसी द्वारा ब्रिक्स के बाहर के देशों में की जाने वाली कामों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये भी है कि कुछ और चीजें की गई हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत क्रिटिकल रोल पैदा किया है, मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म की बात ही कर रहा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें ब्रिक्स के ही कोऑपरेशन में है कि डेवलपमेंट में लोकल करेंसी फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा ना करें कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसको डॉलर में या युआन में दें, आप लोकल करेंसी में दें, ताकि लोकल करेंसी उस फ्लक्चुएशन से बची रहे जो फॉरेन करेंसी के साथ उसका होता है। तीसरा ये कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस करें, उस पर ज्यादा जोर दें जो पर्यावरण को दूषित न करे, जो प्रोजेक्ट उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की,
1: इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक्स हैं, केंद्रीय बैंक हैं किसी भी देश में, जो सारे हमारे ब्रिक्स प्लस देश हैं, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्या भूमिका है?
0: देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की भूमिका ये होती है कि अगर उस देश में कोई प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट से लाया जा रहा है तो वो इन्वेस्टर किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितने दिन में वो जेस्टेशन पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट का, कितने दिन बाद उससे आपको पैसा मिलना या उसका उत्पादन करना शुरू होगा, कितने दिन बाद उसका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर का उसको मिल जाएगा। जैसे सड़कें बनती हैं
1: जी,
0: सड़कें बनती हैं तो उसमें यह होता है कि टोल टैक्स लिया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट आदमी ने सड़कें बनाई, टोल टैक्स लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए टोल टैक्स नहीं ले सकता, एक सर्टेन पीरियड तक के लिए टोल टैक्स ले सकता है। तो यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहां पर सेंट्रल बैंक यानी हमारे हिसाब से भारत के संदर्भ में ये रिजर्व बैंक करता है। तो वो रिजर्व बैंक ये सब चीजें देखेगा कि ये जो पैरामीटर जिनके आधार पर किया गया है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, वो उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग के द्वारा जो वित्त मंत्रियों की है, इसमें एक चीज ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि ब्रिक्स समूह के विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाए जो कि ब्रिक्स के सारे देशों में कम से कम लागू हो, ताकि किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर कोई प्रोजेक्ट करने में या कुछ इन्वेस्ट करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े।
1: जी, जब हम त्रिपाठी जी विकास की बात करते हैं तो एक पूरे जैसे हम ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बड़ी पूंजी की जरूरत है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर निजी पूंजी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। तो सड़क निर्माण के अलावा और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास के लिए हमें बड़ी पूंजी की जरूरत है?
0: देखिए, हमें सड़क निर्माण में बड़ी पूंजी चाहिए, हमें शिप बिल्डिंग में चाहिए, हमें बंदरगाहों के निर्माण में चाहिए, तटों के निर्माण में चाहिए, हमको सिविल एविएशन जहाज के निर्माण में चाहिए, जहाज के उत्पादन में चाहिए, हमको स्टील वगैरह के उत्पादन में चाहिए, हमको गैस पेट्रोल इसके रिफाइन और डाउन स्टीम दोनों में इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ ही आप डिफेंस सेक्टर खुला तो डिफेंस के लिए भी हमें डिफेंस में कई चीजें बनाने के लिए पैसा चाहिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए चाहिए, तो देखिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ रहा है धीरे धीरे, कई ऐसी चीजें हैं खनन के लिए हमें
1: जी जी, खासतौर से अगर हम बात करें जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल की है, कोई भी हम विकास का काम करें, तो इन क्षेत्रों में किस तरह की और संभावनाएं दिखती हैं आपको निजी क्षेत्र की भागीदारी की?
0: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अपरिमित संभावनाएं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी बाढ़ आ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की
1: जी,
0: तो एक बार आप खोलिए रास्ता तो देखिए लोग आएंगे, और टेली कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन में, जिसमें हम अभी काफी पीछे हैं, उसमें बड़ी पूंजी की जरूरत है। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि हमारा डिजिटल डेटा बाहर न जा सके, वो डिजिटल डेटा यहाँ पर सुरक्षित
1: जी। तो पंडित जी, अगर हम भारत की खास तौर से बात करें, भारत सरकार ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जहाँ पर विकास की परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसे हम पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, या हम जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, तो इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, इनके बारे में आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे?
0: इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। जैसे आपने कहा, गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की है, वो इस मामले में काफी सफल रही है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करने के मामले, जहाँ रोड है वहाँ ठीक है, जहाँ रेल है वहाँ तक ठीक, अगर नहीं है तो तीसरा मॉडल वाटरवेज, अगर आप उससे भी शुरू करें। आपको ध्यान होगा कि शायद ये योजना है अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई है, कि कलकत्ता से और प्रयाग तक
1: जी
0: गंगा बड़ी हो जाती है तो
1: जल मार्ग का
0: विकास किया जाए। हम म्यांमार के लिए जल मार्ग का विकास कर रहे हैं, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कालाधान योजना, ये जो है सरकार काम कर रही है
1: जी।
0: लेकिन कई इसमें क्षेत्र हैं जिसमें हम उतनी तेजी से नहीं काम कर रहे हैं जितनी तेजी से काम करना चाहिए।
1: जैसे कि हम अगर जिक्र करें, जो फ्रेट का जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है मालभाड़े, उस क्षेत्र में भी आपको लगता है अभी और काफी संभावनाएं हैं पूंजी की?
0: हाँ, देखिए अभी जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बनना ही ठीक नहीं है। बनने के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे अगर उस पर फ्रेट लेकर के कोई वाहक जा रहा है तो जगह जगह पे उसकी चेकिंग की भी संभावना होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कहीं से पिलफरेज की कोई वो ना हो, कहीं परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी सहायता दी जाए।
1: त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे का गाया चांदनी फिल्म का गीत। शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत शिवहरि का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026

0: 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपया घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 320 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57%

0: परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और आनंदपुर के पास वैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस

0: स्टेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
1: चित्रगीत कार्यक्रम में अगला गीत एतबार फिल्म से युगल स्वर आशा भोसले और भूपेंद्र का, संगीत बप्पी लहरी का है और शब्द हसन कमाल के।

श्रोताओं, इसी के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मनभावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मयंक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आपके फरमाइशी पत्रों की और लेते हैं आज का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तीन देवियां फिल्म से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है एचडी बर्मन का। फरमाइश हमें इन श्रोताओं से प्राप्त हुई है। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान। धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी। ग्रामखेड़ा मंसूर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां। डपवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। संभाजीनगर महाराष्ट्र से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। तो आइए सुनते हैं तीन देवियां फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

मनभावन कार्यक्रम का अगला गीत उम्मीद फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, रवि का संगीत है और सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता सहारनपुर से सुरेश नारंग और आशु नारंग। अगले श्रोता हैं गुमाश्ता नगर इंदौर से अनिल कौचाले, सबिया, फजल, सुषमा, पूजा नेनामा, सीमा, स्मिता, मीनू और नेहा। कोल्हापुर से अतुल गौतमी, धमनीदा, अरुण काले, एडी कामले, प्रशिक, मेघना, तुषार, उत्कर्षा और इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता हैं शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इस समस्त राजावत परिवार। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारा, क्षमा कीजिए काव्यांशी कटारिया। अगले हमारे श्रोता हैं बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। राजस्थान के हमारे श्रोता हैं ब्रिजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। सुदामानगर इंदौर से अमित भंडारी, उषा, समता चित्रा और निशा। आदर्शनगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मेंडी, सौरभ, शाइमा और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं उम्मीद फिल्म का मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, और अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया वापस फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रिधोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला, मंगेश और इनके परिवार।

के सदस्य, द्वारकापुरी इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना शर्मा, जयदीप, अर्पिता, हेमंत, हिमांशु, ओशीन, अद्विका, निशिता और समस्त शर्मा परिवार, उमरखेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका, लक्ष्मी, स्वरित और उत्तम जमधाड़े। अगले हमारे श्रोता है आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, आशा, सुषमा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, दुर्गा, मधु, मिलन, आयुष, उमंग, आयुष और इनके परिवार के सदस्य। वेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। अगले हमारे श्रोता वाशिम महाराष्ट्र से सुषमा, विठल, परिधि, निधिश, मायरा और सुरुषे परिवार। मुंबई से भावना यादव, अधीश यादव, स्मित गोरे और श्रेयांश गोरे। गांव फ्रांसी से राजकुमार हुड्डी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष और बब्बू डब्लू। जालना महाराष्ट्र से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, वर्षा, संजीत, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली, सानवी और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया वापस फिल्म का ये गीत।

मनभावन कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म है ससुराल। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है सजरपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, घंटाघर चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, पंजाब से हरदेव

मीका बलविंदर बीरक जैतिक बीरक और मीका बीरक। बड़वानी मध्य प्रदेश से संतोष यादव शिवराम यादव दुर्गा निखिल अंकित नंदनी किरण सोनू रेखा घीसु दिलवारे और संतोष पाटिल। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी वीपी रंजू अशोक पुरी सुशील रामापुरी बीके पुरी कैलाश नीलमपुरी और आरएसपुरी। सनावत से किशोर कुमार सावले रेखा सावले हिमांशु अनुराग सुलोचना चारोवी और मास्टर प्रणव सावले। बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद वर्मा भागवत वर्मा अभिषेक सीमा अमित समर राज आर्यन आरोही इशिका अंजलि और श्वेता वर्मा। खंडवा मध्य प्रदेश से रमेश पंचोली बीनो देवी पंचोली प्रकाश उर्मिला दीपक दीपिका नंदनी निखिल और गुरांज पंचोली। साथ ही इनके साथी हैं तेजल नीलकंठ मीरा देवी शिवानी पिंकी और राधाबेन। तेलंगाना से मोहम्मद बरहानुद्दीन रुकनुद्दीन मंटाल फजान समीरा अजमीन गुड़िया अजीज़ भाई और इनके परिवार के सदस्य। बुल्डाना महाराष्ट्र से सैयद आरिफ जुनैद बेग गोविंद भगेरिया और मोहिद अली। तो आइए सुनते हैं ससुराल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं नीरज का लिखा गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। पसंद इन सब की। लाबरे भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। संभाजीनगर महाराष्ट्र से राजेश पाटिल, राजदीप, रशि और शीतल। करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी और इनके परिवार के सदस्य। वाकोड़ी महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वरा जमधाड़े, स्वरीत, संघर्षा, संविधान जोधड़े। हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के और इनके परिवार के सदस्य। दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैया लाल और रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। चांदूरा बिस्वा से नारायण भाव खड़से, ललिता परी खड़से, गणेश, कार्तिक, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी। हिंगोले के ही श्रोता हैं रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू, मयूरी सुरभि, मंजूषा। अगले हमारे श्रोता हैं राजस्थान से राजू टुटेजा, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जिन्नू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत बड़वाल, शिव सेठी, करणपुरी, इस्माइल टुटेजा और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत।

मन भावन कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, आवाज मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम जीने की राह। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, पालदा नगर इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी, बागपत से संजय ढेंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल, आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार और समस्त माखीजा परिवार। अगले हमारे श्रोता हैं रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, लीलू सिंह और ऋतु सिंह, धनबाद झारखंड से अमित कुमार, प्रियंका और बेबी समृद्धि, बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा और रवि, पटना बिहार से भुवनेश्वर सिंह और इनके परिवार के सदस्य, बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी और तृप्तेश, बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव और सुरेश। तो आइए सुनते हैं जीने की राह फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की।

श्रोताओं, मनभावन कार्यक्रम की अगली फरमाइश के रूप में आपको सुनवा रहे हैं रफू चक्कर फिल्म का गीत शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज में। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता सोमानी नगर इंदौर से बी आर राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और श्रीधा। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम और रुखसार। महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री। बल्हार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य। वाशी महाराष्ट्र के श्रोता राजेश खम्बायतकर, प्रेमा, राजश्री और राजू भावसार और इनके परिवार के सदस्य। अमरावती से चंदू हातोले और इनके परिवार के सदस्य। नीमच मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तो आइए सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म का शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले का गाया ये गीत।

मनभावन कार्यक्रम की अगली फरमाइश श्रोताओं हम लेकर आए हैं फिल्म ममता से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत राजेश रोशन का। सुनने वाले हमारे श्रोता कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली, बुड़गान छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता और इनके परिवार के सदस्य, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक,

करण, गीतू, निहारिका और वंशपत्ता। ज़िला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज़, रोज़मीन, तैमूर और इनके परिवार के सदस्य। बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार और दीक्षा कुशमुणत और इनके परिवार के सदस्य। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। तो आइए सुनते हैं ममता फिल्म का लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

मन भवन कार्यक्रम में श्रोताओं, लीजिए अब आप सुनिए अलग अलग फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के शब्द हैं और आरडी बर्मन का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता, जरूर अरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब आड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी, कार्तिक और युवराज, सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम रानी शर्मा और बच्चू शेख, चीना, नदीम, रूबीना, इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता है महसोल बिहार से, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, आबिहा, अरहान, हमज़ा और मुजम्मिल बाबू। अगले हमारे श्रोता है भटिंडा रोड डबवाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित। गोरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला और गायत्री। मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा, नीतू और इनके परिवार के सदस्य। किशनपुर से हमारे श्रोता हैं शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना चांदनी और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया अलग अलग फिल्म का ये गीत।

मन भावन कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया हीरो फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांती प्यारेलाल ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। अगले हमारे श्रोता हैं सपना संगीता रोड इंदौर मध्य प्रदेश से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इंदौर के ही हमारे श्रोता हैं दिनेश हार्डिया, ज्योति, राहुल, अंजू, वर्षा, अवधि, दिव्यराज और हेमंत, इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता हैं फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरमान और गुरनूर सिंह। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। सनावत मध्य प्रदेश से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना। तो आइए सुनते हैं हीरो फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे का गाया राग बिहाग, तबला संगत भरत कामत की है।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे का गाया राग बिहाग। तबला संगत भरत कामत की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
4: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
3: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business. But continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu will address the nation on the eve of the 80th Independence Day tomorrow. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Country's exports, including merchandise and services, registered a robust growth of 13.3% in July this year by reaching to $80.14 billion. The country's exports were $70.72 billion in the same month last year. According to the provisional data released by the Commerce Ministry, the export performance was led by merchandise shipments, which jumped over 19.6% to over $44 billion last month from $36.98 billion in the same month last year. A terrorism monitoring team of the United Nations Security Council, UNSC, has declared the deadly Red Fort suicide car bombing in Delhi that killed 11 people the work of Al-Qaeda in the Indian subcontinent, AQIS. The report by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team on Terrorism to the Security Council said the attack in last November was officially attributed to AQIS. India emerged as the overall champions at the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. Indian contingent secured 13 gold, 8 silver and 14 bronze medals at the event across the under 23 and senior competitions. The performance also helped India win the Wilkinson Sword Trophy awarded by the Commonwealth Fencing Federation to the country with the best overall results. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। पहली सभा में इसी मीटर पर सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।